सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त सन 2026 सुबह के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 89.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, आपको देते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। आज का शीर्षक होगा मदद। अक्षय निधि कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से वाचन। आज आप सुनेंगे दूसरा सूक्त। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे 8:00। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर। 8:30 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आप सुनेंगे नगीन तनवीर से मनीषा चतुर्वेदी की खास बातचीत। मनु मिश्रा और साथियों का कविता पाठ आप सुनेंगे वागर्थ कार्यक्रम में प्रातः 9:00। और इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे संध्या 7:00। 9:30 पर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे गायन जुगलबंदी। भोपाल शहर की साहित्य गतिविधियों पर केंद्रित कार्यक्रम परिक्रमा लेकर आएंगे आज दिन में 10:00। 10:30 पर होगा कार्यक्रम आजाद हिंद। आज का आकर्षण केशव बलिराम हेडगेवार। कला कल्लोलिनी कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा सत्यदेव दुबे पर। प्रसारण समय दिन में 11:00। कला कल्लोलिनी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे रात्रि 9:00। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। इस कार्यक्रम का 24वां भाग आज हम प्रसारित करेंगे, तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। अब समय है कार्यक्रम जीवन सौरभ का।
1: जीवन सौरभ।
2: गांव के एक छोटे से लड़के का नाम रोहन था। उसका सपना था कि वे बड़े होकर बहुत पैसा कमाए और दुनिया घूमे। उसने ये सपना अपने दादाजी से साझा किया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, रोहन, दुनिया में सच्ची खुशी पैसों से नहीं मिलती। रोहन ने पूछा, तो फिर सच्ची खुशी कैसे मिलती है दादाजी? दादाजी उसे अपने पुराने दोस्त रमेश के घर ले गए। रमेश के पास कोई बड़ा घर या कार नहीं थी, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट दिखाई देता था। रोहन ने उनसे पूछा, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? रमेश ने कहा, मैंने सीखा है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है। उस दिन रोहन ने समझा कि सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने में है।
1: जीवन सौरभ।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं अग्नि और छंद है जगती।
4: यज्ञेन वर्धत जात वेद समग्निम यजध्वम हविषा तना गिरा समिधानम सुप्रयसम स्वर्णरम द्युक्षम होतारम व्रजनेशु धूर्षदम। हे याज्ञिको, समिधाओं से प्रज्वलित होने वाले उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता, उत्तम अन्न संपदा से युक्त, सुखपूर्वक उद्देश्य तक पहुंचाने वाले, संग्राम में बल प्रदान करने वाले होता रूप अग्निदेव का विस्तार करो तथा हविष्यान्न समर्पित करके स्तुतियों द्वारा पूजन करो। अभित्वा नक्ति रुषसो ववाशिरेग्ने वत्सम न स्वसरेषु धेनवः दिव इवे दरतिर मानुषायुगा क्षपो भासी पुरुवार।

0: विद्यमान है तथा दिन के समान रात्रि में भी प्रकाशित होते हैं। तम देवा बुधने रजसः सुदंससम दिवस पृथिव्यो ररतिम न्येरिरे रथमिव वेद्यम शुक्र शोचिषमग्निम मित्रम न क्षितिषु प्रशंस्यम। श्रेष्ठ कर्मा द्युलोक और पृथ्वी लोक में संव्याप्त श्रेष्ठ ऐश्वर्य युक्त रथ वाले तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त प्रजाओं में सर्वश्रेष्ठ मित्र के समान प्रशंसनीय अग्निदेव को देवगण सभी लोकों में स्थापित करते हैं। तमुक्षमाणम रजसी स्व आदमे चंद्रमिव सुरुचम ह्वार आदधुः प्रश्न्याः पतरम चितयन्तमक्षभिः पाथो न पायुम जनसी उभे अनु। अंतरिक्ष से वृष्टि कराने वाले चंद्रमा के समान उत्तम कांतिमान पृथ्वी पर सर्वत्र गमनशील ज्वालाओं से दृष्टिगत होने वाले द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों में सेतु के समान व्याप्त अग्निदेव को अपने घर में एकांत स्थान पर लोग स्थापित करते हैं। स होता विश्वम परि भूत्वद्वरम तमु हव्येर मनुष रिंजते गिरा हरिशिप्रो वृधसानासु जर्भुरद्यौर्न स्त्रिभिश्चितयद्रोदसी अनु। वे अग्निदेव होता रूप में संपूर्ण यज्ञ स्थल को सभी ओर से संव्याप्त करते हैं। याजक गण उन्हें हविष्यान्न तथा स्तुतियों के द्वारा अलंकृत करते हैं। जिस तरह से आकाश नक्षत्रों से प्रकाशित होता है उसी प्रकार तेजस्वी ज्वालाओं से समिधाओं के बीच में पड़ते हुए अग्निदेव द्यावा पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। स नो रेवत समिधानः स्वस्तये संददस्वान्र यिमस्मासु दीदिहि आ नः कृणुष्व सुविताय रोदसी अग्ने हव्या मनुषो देव वीतये। हे अग्निदेव हमारे लिए कल्याणकारी ऐश्वर्य प्रदान करते हुए दीप्तिमान हो। दयावा पृथ्वी को हमें सुख प्रदान करने वाली बनाए और मनुष्यों द्वारा समर्पित किए गए हविष्यान्न को देवताओं तक पहुंचाएं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: चैनल देश के लिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है अपने रेडियो सेट पर। श्रोताओं अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत कार्यक्रम।

भगवत गीता में श्री कृष्ण कर्म योग से भक्ति इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि जो भी काम हम करें उसे प्रभु को अर्पण करके करें, फल की चिंता ना करें। घर के काम हो, हमारी नौकरी हो, सब कुछ उन्हें समर्पित करके करें तो वो पूजा बन जाएगा।

प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं। वे कहते हैं, मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे पूजो, मुझे प्रणाम करो। अर्थात पूजा, भजन, कीर्तन और नाम जप। भक्ति ही वह माध्यम है जो सबसे सरल है, जो हमें प्रभु का

अर्थात कलयुग में भक्ति करने का एकमात्र सुगम और सरल उपाय है नाम जप करना, अर्थात केवल नाम लेते रहो, सदैव नाम लेते रहो, उठते बैठते काम करते, सततम कीर्तयन्तु माम। केवल नाम जप ही एकमात्र उपाय है इस भवसागर से तैरने का।

पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। अर्थात भगवान कहते हैं कि एक पत्ता, फूल, फल या पानी भी अगर प्रेम से मुझे आप देंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम की ये अगली और अंतिम भक्ति रचना।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महान खगोल शास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के महान वैज्ञानिक, कुशल अध्यापक और उच्च कोटि के विद्वान थे, जिन्हें सन 1983 में तारों की संरचना और विकास से संबंधित उनके शोध और अन्य महत्वपूर्ण योगदान के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो अपने चाचा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक सीवी रमन के विचारों से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने नोबेल पुरस्कार हासिल किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 20वीं सदी के उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने खगोल भौतिकी समेत व्यावहारिक गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने यर्की वेधशाला और एस्ट्रोफिजिकल जनरल के संपादक के रूप में काम किया। इसके बाद उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में एक रिसर्च एसोसिएट के पद पर नियुक्त किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर सन 1910 को लाहौर के एक समृद्ध वैज्ञानिक भारतीय परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सीता लक्ष्मी और पिता का नाम सुब्रमण्यम था, जो रेलवे में कार्यरत थे। बचपन में लोग उन्हें प्यार से चंद्रा कहकर पुकारा करते थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई घर पर रहकर ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने हिंदू हाई स्कूल में प्रवेश लिया, आगे की शिक्षा मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रहण की और फिर भौतिकी विषय में बीएससी कर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शुरू से ही वे एक अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्हें भारत सरकार की ओर से स्कॉलरशिप प्राप्त हुई और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। साल 1933 में उन्होंने पीएचडी की और फिर उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में फेलोशिप के लिए चुना गया। जिस साल उनके चाचा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने अपनी खोज से नोबेल पुरस्कार हासिल किया, उस समय सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल कर रहे थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अपने चाचा सीवी रमन की तरह ही विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने खगोल विज्ञान को चुना। 18 वर्ष की आयु में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का पहला शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ। स्नातक की उपाधि लेने तक उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जीवन सरलता और सादगी से भरा हुआ था और उन्हें अपने काम से अत्यंत प्रेम था। बीएससी करने के बाद उन्होंने श्वेत लघु तारों पर किए गए अनुसंधान कार्यों को बड़े ध्यान से पढ़ा। ये अनुसंधान इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक राल्फ एच फॉलर ने किया था। अध्ययन करने के बाद चंद्रशेखर ने उस विषय पर अपना एक वैज्ञानिक लेख तैयार किया। इस लेख का प्रकाशन सन 1928 में प्रोसेसिंग ऑफ द रियल सोसाइटी में हुआ। इतनी कम उम्र में उनकी ये उपलब्धि गौरव की बात थी। इस तरह वो बढ़ते रहे अपने

24 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने तारे के गिरने और लुप्त होने की अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा सुलझा ली थी। शोध पत्र के अनुसार श्वेत लघु तारे एक निश्चित द्रव्यमान यानी डेफिनेट मास प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वे ब्लैक होल बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान आज सूर्य से 1.4 गुना होगा वे अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाएंगे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भारत सरकार की स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। यहीं पर उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट का सिद्धांत दिया, लेकिन इस सिद्धांत से उनके शिक्षक और साथी छात्र प्रभावित नहीं थे। 11 जनवरी सन 1935 को उन्होंने अपनी खोज रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सामने पेश की। इसके बाद उस वक्त के महान खगोल शास्त्री और ऑक्सफोर्ड में उनके गुरु आर्थर एडिंगटन ने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को अपना रिसर्च पेपर सबके सामने रखने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन बाद में सर आर्थर एडिंगटन भी उनके इस शोध को प्रथम दृष्टि में स्वीकार नहीं कर सके। पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हार मानने वाले नहीं थे, वे पुनः शोध साधना में जुट गए। अपनी इस खोज के माध्यम से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने तारों के समूह की अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किया। इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का तारों की संरचना और क्षोभ सिद्धांत नामक शोध भी प्रमुख रहा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर मात्र 27 वर्ष की आयु से ही खगोल भौतिकविद के रूप में अच्छी धाक जमा चुके थे। सन 1966 में जब साइंस ने कुछ और तरक्की कर ली, कंप्यूटर और गणना करने वाली दूसरी मशीनें सामने आ गईं, तब जाकर पता चला कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की गणना बिल्कुल सही थी। साल 1968 में इस महान वैज्ञानिक को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

1972 में जब ब्लैक होल की खोज हुई, तब इस खोज में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की थियरी बहुत काम आई और सन 1983 में उनके इस सिद्धांत को मान्यता मिली। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट सिद्धांत की खोज कर एक महान सफलता अर्जित की थी और इसके बाद पूरी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। तारों के ठंडा होकर सिकुड़ने के साथ केंद्र में घनीभूत होने की प्रक्रिया पर किए गए अपने रिसर्च के लिए वो दुनिया भर में जाने और माने गए। चंद्रशेखर लिमिट सिद्धांत की इस महान खोज के बाद ही न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स का पता चला। इस खोज के कारण भौतिकी के क्षेत्र में सन 1983 का नोबेल पुरस्कार उन्हें तथा डॉक्टर विलियम ए फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। उनकी खोजों से न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के अस्तित्व की धारणा कायम हुई, जिसे समकालीन खगोल विज्ञान की रीढ़ प्रस्थापना माना जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण खोजें भी की। महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपनी पहली किताब लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्टेला स्ट्रक्चर। इसके बाद उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेलर डायनेमिक्स, रिव्यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, रेडिएटिव ट्रांसफर, हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोमैग्नेटिक स्टेबिलिटी आदि महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित हुईं। इसके साथ ही उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और मशीन संबंधी सिद्धांतों की सरल भाषा में व्याख्या भी की। सन 1987 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की एक और पुस्तक ट्रुथ एंड ब्यूटी ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई थी। इसमें न्यूटन, शेक्सपियर और बिथोवन पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा दिए गए भाषण तथा कई महत्वपूर्ण निबंध शामिल थे। भारत के महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 21 अगस्त सन 1995 को अंतिम सांस ली। वे अपने जीवन के आखिरी दिनों में शिकागो आ गए थे और वहां रहकर ही किताबें लिखते थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपनी अनेक महत्वपूर्ण खोजों के माध्यम से विज्ञान जगत को अत्यंत समृद्ध किया। अपनी महान खोजों के लिए वो सदा याद किए जाते रहेंगे। भारत को दुनिया भर में गौरवान्वित करने वाली ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: दोस्तों नमस्कार, आमने सामने कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, रंगकर्मी और नया थिएटर की विरासत को आगे बढ़ाने वाली नगीन तनवीर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
3: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।
2: आपने बचपन से हबीब तनवीर जी को केवल एक महान रंग निर्देशक के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के रूप में भी देखा है। और इन सब से इतर नगीन जी बहुत ज्यादा अपने भीतर लोक गायकी के एसेंस को छुपाए हुए हैं, हमें जब तब उसकी खुशबू सूंघने को मिल जाती है। आपका बहुत स्वागत है नगीन जी स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहूँ तो वो ये कि नगीन तनवीर खुद नगीन तनवीर को कैसे परिभाषित करेंगी?
4: कलाकार के तौर पर और एक सच्ची साधक के तौर पर।
2: वाह, तो ये साधना आपकी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत मधुर गाती हैं और जब भी आपको सुना है स्टेज से तो हर बार लोक गायकी का एक नया ही रंग देखने को मिलता है। तो क्या हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी आवाज में कुछ सुन सकते हैं?
4: मैं एक बहुत पुराना पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाऊंगी जो फिल्मों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑथेंटिक जो जैसा था वैसा मैं पेश कर रही हूँ।
2: जी।
4: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।

0: क्या बात है, क्या बात है। आपको सुनना, आंखें बंद कर ली जाए और आपको सुना जाए तो ऐसे लगता है जैसे हम भी वहीं पहुंच गए हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की माटी में। बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सिक्स का ये गाना हम लोगों ने तो बिल्कुल खड़ी हिंदी में ही सुना है, लेकिन आपके मुंह से लोक भाषा में लोक रंजित तरीके से सुनना बहुत आनंददायक था। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि हबीब तनवीर जी को अपने आप में रंग धर्म का, रंग कर्म का विश्वविद्यालय माना जाता है, लेकिन कई बार इतनी बड़ी विरासत के साथ जब आप रहते हैं, ऐसी शख्सियत के साथ जब आप रहते हैं, तो शेडो इमेज का भी एक कहीं ना कहीं असर आ जाता है। आपको क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कि पिता मेरे एक बरगद के पेड़ जैसे थे,
0: जी
1: तो उसके प्रभाव में मैं थी। और पहले ऐसा था, अब वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है।
0: जी
1: अब अपनी मेरी खुद की पहचान अब बन रही है। इसलिए कि इतना उनका ऑरा था, ऊर्जा का, और रौब भी था। और ये मैंने देखा है कि एकाग्रता, जिसे अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं, उससे ऊर्जा बढ़ती है। उसी ऊर्जा से लोग मतलब कांपते भी थे, डरते थे और हिचकिचाते थे। उसी ऑरा का असर मुझ पे भी पड़ा, ऊर्जा का असर। और जैसे कि मैंने कहा कि बरगद के पेड़ जैसे थे, आपने कहा ना कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय थे, तो बरगद का पेड़ सबको समा लेता है। वैसे ही थे हबीब साहब। बहुत सालों तक उस प्रभाव में मैं झुकी रही, कह सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन अब वो बदल गया है कुछ सालों से।
0: जी जी जी आपकी माँ मोनिका मिश्रा जी खुद बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थीं। आपको क्या लगता है हबीब तनवीर जी के रंग कर्म, नया थिएटर और उनके सपनों को साकार करने की यात्रा में मोनिका मिश्रा जी का क्या हाथ देखती हैं आप?
1: मोनिका मिश्रा जी को पूरी तालीम थी अमेरिका से, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, सब कुछ। लेकिन जब उनका विवाह हुआ हबीब साहब के साथ, तो उनको लगा कि ये मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो उन्होंने एक कदम पीछे कर लिया, वरना ईगो क्लैश होता
0: जी
1: ज़बरदस्त। तो एक कदम पीछे कर लिया और फिर वो बैक स्टेज काम संभालती थी, प्रॉपर्टीज और कॉस्ट्यूम। और पहले रोल भी कराए हबीब साहब ने उनको, तो रोल करती थी, बहुत अच्छी कॉमेडी एक्ट्रेस थी। तो धीरे धीरे उन्होंने पीछे वो हट गई, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो एक टीम वर्क जैसे काम करने लगे। हबीब साहब डायरेक्टर थे तो वो प्रोड्यूसर थी, वो सारे टिकट छपवाती थी, इनविटेशन कार्ड्स छपवाती थी, पासेस, एंटरटेनमेंट टैक्स पहले हुआ करता था, दिल्ली में सिस्टम था, वो सब दौड़ भाग का काम वो करती थी,
0: जी
1: पब्लिक बस में जाके ये सब करती थी। तो दे वर्क लाइक अ टीम। और ये पहली मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में
0: जी
1: ऐसी टीम वर्क की। और बाद में तो ऐसा हुआ कि कोई भी चीज़ के लिए बगैर उनके सलाह मशवरा के बगैर वो आगे कदम नहीं बढ़ाते थे हबीब साहब, चाहे वो डायरेक्शन का कुछ काम हो या कॉस्ट्यूम हो या कुछ भी हो या स्क्रिप्ट में कोई टेक्स्ट हो, संवाद हो, हर चीज़ में मोनिका मिश्रा जी को दखल था। हर चीज़ में उनसे सलाह लेते थे कि ये मोनिका ये ठीक है कि नहीं है।
0: जी
1: तो कभी कभी वो मान लेते थे उनकी बात, और जब उनको वो आइडिया पसंद नहीं आता था तो उनसे कुछ नहीं कहते थे, वो चुपचाप मतलब दूसरा रास्ता अपनाते थे, दूसरा जो उनको ठीक लगता था,
0: जी
1: और कहते नहीं थे कुछ उनसे।
0: जी
1: तो मोनिका मिश्रा जी समझ जाती थी कि अब ये मेरा ये आइडिया उनको पसंद नहीं आया, लेकिन स्वीकार, एक्सेप्टेंस बहुत था, उसको कबूल कर लेना, उस पे बहस ना करना, तर्क ना करना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा।
0: आपके बचपन में आपको लिए चलते हैं नगीन जी, क्योंकि हम जब और बच्चों की परवरिश देखते हैं तो भाई पढ़ाई करो, उठो, चलो स्कूल जाना है, लेकिन हबीब साहब का तो अपने आप में कभी कहीं उनका थिएटर का प्रस्तुति होनी है, कभी कहीं जाना है, मतलब कहते हैं ना कि मुकाम से ज़्यादा सफ़र में कुछ लोग रहते हैं, तो आपका भी बहुत समय सफ़र में गुजरा होगा, आप भी हबीब साहब के साथ इधर उधर काफ़ी जाती रही हूँ, कैसा रहा आपका बचपन?
1: सबसे पहला पहली स्मृतियां तो वो हैं करोल बाग की कि किराए का घर था और ऊपर छत पे बरसाती थी, वहाँ सब ट्रंक्स थे थिएटर के, वहीं पे एक वो नल की टोटी थी पीतल की, वहीं पे 8-10 छत्तीसगढ़ी वहाँ रहते थे और वहीं नहाते थे, खाना पकाते थे चूल्हे पर। पहले तो ये स्मृति रही। फिर जब हबीब साहब संसद सदस्य बने राज्यसभा, तो हमारी अम्मा तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, पढ़ना है तुम्हें, होमवर्क करना, सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई में मुझे तो कोई दिलचस्पी थी नहीं। मैं सोचती थी कि जिंदगी बहुत अच्छी है, नाच और गाना, गाना और नाच। फिर वो पढ़ाती थी, कहती थी कि अच्छा तुम छत्तीसगढ़ियों के पास जा रही हो, 1 घंटे में वापस आना है, ये फला चैप्टर करना है, ये होमवर्क करना है। बहुत सख्त थी वो, तो हम टूर में नहीं जाते थे, वो मेरे साथ रुकती थी घर में। फिर कॉलेज डेज में फिर मैं टूर में जाने लगी, लेकिन जब तक स्कूल था मैं कोई टूर में नहीं जाती थी और अम्मा भी नहीं जाती थी। दिल्ली से बाहर अगर टूर हुआ, वो पढ़ाती थी तो वो समर्पित थी मेरे प्रति कि भाई बच्ची को पास होना, मैथमेटिक्स मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था, और क्या खिलाना है बच्ची को, भाई गिज़ा के भाई बच्ची थक भी जाती है और ये हो। तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थी हमारी अम्मा।
0: आपकी संगीत की तालीम भी बहुत बड़े बड़े गुरुओं से हुई है, आप कुछ नाम लेना चाहेंगे?
1: मैं 8 साल की थी तब शर्वरी मुखर्जी, उन्होंने सिखाया 2-2.5 साल, स्कूल में पढ़ाती थी वो, बड़ी खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि मंदिर से कोई स्कल्पचर तराशी हुई निकल के आ रही है, बहुत ही खूबसूरत थी। फिर जब वो नहीं सिखा पा रही थी तो उनकी जो गुरु थी उस्तानी दीपाली नाग, मतलब दीपाली तालुकदार, जो डॉक्टर बी डी नाग चौधरी की पत्नी थी, जिन्होंने स्वयं फैयाज खान साहब से तालीम ली थी आगरा घराना, फिर उनके अंडर मैंने संगीत प्रभाकर विशारद 6 साल का वो किया
0: जी
1: स्कूल के जमाने में। फिर बड़ौदा चली गई, माँ बाप पूछ रहे थे कि अब कौन से कॉलेज में डालें, इसको तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो दीपाली मासी बुलाते थे हम, तो वो कहने लगी कि बड़ौदा सबसे अच्छी जगह है। बड़ौदा गई, वहाँ 4 साल रही, फिर गुरु की तलाश थी। तो एक हमारे नया थिएटर में थे, वो चेलो प्लेयर थे ऑल इंडिया रेडियो में, ए ग्रेड आर्टिस्ट ज्ञान शर्मा, उन्होंने कहा हमारी अम्मा से, मोनिका सुलोचना बृहस्पति जी से सिखवाओ इसको। तब हमने सुलोचना बृहस्पति जी से 8-10 साल तालीम ली
0: जी,
1: सदरंग रामपुर सदरंग परंपरा
0: जी।
1: फिर यहाँ भोपाल शिफ्ट हो गए, फिर गुंदेचा बंधु से तालीम ली 6 साल
0: जी,
1: उनसे तालीम ली। फिर किसी ने कहा कि तुम फोक गाती रही हो तो क्यों ना तुम ठुमरी तालीम लो, इसलिए कि वो सबसे नजदीक है लोक संगीत के, और लोक संगीत का पॉलिश्ड रूप ठुमरी गायन है
0: जी।
1: तो पूर्णिमा चौधरी जो बनारस घराने की हैं, महादेव मिश्रा जी की प्रथम शिष्या, बहुत अच्छी शिष्या, उनसे सीखो। तो मैं कलकत्ते जाती थी साल में 3-4 बार उनसे तालीम लेने, 2 साल उनसे तालीम ली, ठुमरी तालीम 2-3 साल वो चली
0: जी।
1: इस तरह से
0: अब ठुमरी की बात चल रही है और नगीन जी के मुंह से कुछ सुना ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए इसे थोड़ा और सुरमय बनाते हैं इस बातचीत को। बीच बीच में बताइए क्या सुना रही हैं आप।

0: जल्दी खत्म हो जाता है तो लगता है जैसे किसी ने एक बहुत सुंदर सपने से जगा दिया हो। नगीन जी आप बहुत बहुत अच्छा गाती हैं आप। मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि एक बार आपके कॉन्सर्ट में मैं पहुँची थी और वहाँ पर आप गा रही थी गए दिनों का सुराग लेकर, इधर से आया उधर गया वो, और शायद बहुत से लोगों ने इसको ज़रूर सुना होगा, पर वहाँ मेरे आसपास बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है और शायद ईश्वर के उतनी ही नज़दीक भी, इसलिए लोगों को वो बहुत जल्दी छू जाती है। नगीन जी हम वापस लौट आए हैं आपकी गायकी से। आपने बॉलीवुड के लिए भी गाया है, फिल्मी जगत के लिए भी गाया है, उस अनुभव को कैसे देखती हैं आप?
1: पहली बार मौका मिला था तो अनुषा रिजवी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था उन्होंने कहा नगीन मुझे तुम्हारा गाना चाहिए और चोला माटी जरा गा के सुनाओ, फोन पे बात हो रही है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने गा के सुनाया। उन्होंने कहा इसको हम एक फिल्म में इस्तेमाल करेंगे जो मेरी फिल्म है और आमिर खान प्रोडक्शंस हैं, प्रोड्यूसर आमिर खान हैं, तुम गाना चाहोगे? मैंने कहा वाह ये तो चांदी हो गई, क्यों नहीं। और जिस साल बाबा का इंतकाल हुआ था उसी साल जून में उनकी मौत हुई और दिसंबर 2009 में बांद्रा में स्टूडियो बुक हुआ और इसकी रिकॉर्डिंग हुई पीपली लाइव के लिए। चार पांच टेक्स के बाद रिकॉर्डिंग हुई, फाइनलाइज हुई और सब लोगों ने बहुत सराहा और बहुत कि बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ है। तो वो एक गाने ने मुझे बिल्कुल मशहूर कर दिया।
0: तो वो एक गाना जो है आपका वो हमको सुनवा दीजिए तो हमारे श्रोताओं के लिए भी बड़े आनंद की बात होगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गीत है।
1: चोला माटी तो जीवन दर्शन है जी। और लव्स लिखे थे गंगाराम सिवारे ने जो एक लोक कवि थे बहुत अच्छे
0: जी।
1: और मंडला की ये आदिवासी धुन है पारंपरिक
0: जी।

द्रोणा जैसे गुरु चले गए कारण जैसे दानी संगी कारण जैसे दानी बाली जैसे

0: बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब जब जब किसी को गलत फहमी हो और वो इस जीवन दर्शन से परिचित हो जाए तो अपने आप जमीन पर लौट आएगा। मैं वापस नया थिएटर की तरफ जाना चाहूँगी कि उसको कई लोग कहते हैं कि हबीब साहब बहुत प्रयोग करते थे नया थिएटर में, कहना चाहिए कि रंगमंच की प्रयोगशाला ही थी वो। आप इन चीज़ों को कैसे बताना चाहेंगी विस्तार से?
1: पहली चीज तो ये है कि जितने लोक नाट्य धर्म शैली के हैं हिंदुस्तान में फोक थिएटर्स, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप बहुत रहता है आशुरचना का। तो हरियाणा में स्वांग शैली कहलाती है, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता है, और राजस्थान में भी शैली है वहाँ भी होता है, और एक और क्षेत्र में काम किया गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, साउथ उड़ीसा। तो उसमें कहाँ लोक नाट्य धर्म और कहाँ क्लासिकल, इतनी बारीक लकीर थी कि पता नहीं चलता था। तो इम्प्रोवाइजेशन, इसलिए के फोक एक्टर्स बहुत अच्छे इम्प्रोवाइजर्स हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ व्यंग का पहलू, इसलिए के हसोड़ हैं, तो व्यंग का पहलू, सटायर जिसे कहते हैं, वो कूट कूट के भरा हुआ है। हल्की एक्टिंग, व्यंग्यात्मक, सूक्ष्म, बिल्कुल सटल, ऐसा लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे। तो इम्प्रोवाइजेशन, फिर किताबें उन्होंने खरीदी यूरोप से, इंग्लैंड से, इम्प्रो, तो उसको स्टडी करते थे, पढ़ते थे, और फिर देखते थे। दक्षिण भारत भी जाके उन्होंने कुडियाट्टम, ऐसे बहुत सारी शैलियाँ देखी हिंदुस्तान में, गुजराती थिएटर देखा, पारसी थिएटर में, मराठी थिएटर देखा, सब कुछ। और फिर क्या अमल हो सकता है मेरे थिएटर में, ये उन्होंने खूब मंथन किया, पढ़ा, जो विलायत से किताबें लाए थे, और देखा, फिर खुद का मंथन चला, फिर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ प्रैक्टिकली, इस पे मंथन भी चला होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इम्प्रोवाइजेशन, उसी में ड्रामे बने हैं
0: जी,
1: और उसी से इम्प्रोवाइजेशन के तरीके से ही स्क्रिप्ट का गठन हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी गई, संवाद। तो वो समझा देते थे कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ी मंडली को ये है कहानी, इसको तुम लोग आपस में बात कर लो, आधा घंटा 45 मिनट ले लो और मुझे करके दिखाओ। तो वो दिखाते थे, करके दिखाते थे, तो फिर कहते थे फिर से आपस में बातचीत करो और दोबारा करके दिखाओ। खुद भी मेहनत करते थे, दूसरों से भी खूब करवाते थे। उनको लगता था कि अब मुझे दखल देना है, तब वो दखल देते थे। शुरुआत में ये हुआ कि शुरू शुरू में जब छत्तीसगढ़ी मंडली बनी 1970-71 में, तो शहरी और छत्तीसगढ़ियों को मिला जुला रूप उसे ड्रामे होते थे, मसलन आगरा बाजार, लेकिन फिर वो हिंदी के संवाद उनको कहते थे कि ये बोलो, तो वो बहुत, कहीं उनका मेंटल ब्लॉक हो जाता था, वो नहीं बोल पाते थे, तो उनके समझ में नहीं आ रहा था हबीब साहब के इनको जब ग्रामीण नाचा थिएटर में देखा तो बेबाक होके एक्टिंग कर रहे, यहाँ ये कौन सी चीज है जो रुकावट डाल रही है। बहुत धीरे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हुआ कि हिंदी में बुलवा रहा हूँ इसलिए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि भाई यही संवाद तुम छत्तीसगढ़ी में बोलो। उसमें फिर रौनक आ गई और रोशनी आई, तो फिर उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया कि अब मैं छत्तीसगढ़ी में करूँगा। उनको समझ में आया कि ये जो क्रैम्प्ड फीलिंग आ रही है उनके जहन में कलाकारों के, ये भाषा की वजह से आ रही है। फिर जब सही तरीका मिल गया ना, तो फिर वो फॉर्मूला बन गया, फिर उसी ढर्रे से वो चलते थे। अगर उनको लगता था कि कुछ कमी है तो कुछ पढ़ लेते थे, किताब, ढेरों किताबें खरीदते थे विलायत से, पढ़ते थे, फिर सोचते रहते थे, सोचते रहते थे। फिर दूसरी बात यह है कि फैमिली थिएटर जैसे था, और जब छत्तीसगढ़ी कलाकारों को देखा दिल्ली वालों ने, तो उनको बहुत जल्दी स्वीकार नहीं किया, बहुत कठिन था, अफिल टास्क था, बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, हर कदम पे संघर्ष था। लेकिन फिर जब फॉर्मूला बन गया, तो जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है H2O, वैसे उन्होंने परंपरा, जड़ों से चीजें ली और उनको हूबहू वैसे ही पेश कर देना, नहीं, वो कैसे इस ड्रामे में फिट होती हैं, वो कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट का पर्यायवाची मुझे नहीं मालूम, तो कैटलिस्ट का काम किया। अंदर दिल और दिमाग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ
0: जी,
1: और फल की कभी चिंता नहीं की। वो फल जब मिला तो छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने। तो ये बहादुरी से चलते रहे, दृढ़ता पूर्वक चलते रहे।
0: अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है, वो कितना सच है ये तो आज आप ही बताएंगी, कि हबीब साहब को जब जरूरत होती थी कि मंच पर कोई सब्जी वाला आ जाए तो सब्जी वाले को बुला लेते थे, और मंच पर जब कोई चौकीदार की जरूरत हो तो चौकीदार को बुला लेते थे। इसमें कितनी सच्चाई
1: है भाई। 1954 में जब आगरा बाजार तैयार हुआ फुल फ्लेजेड ड्रामा
0: जी,
1: तो एक बटला हाउस था, एक मतलब फूस की छत थी उसकी, उसको बटला हाउस कहते थे जामिया मिल्या में। हाँ। और जामिया बिल्कुल जंगल ही था, और ओखला के बाजार वालों को लिया
0: जी,
1: और एक गधे को भी लिया, और गधे ने स्टेज पे लीड कर दी। तो बाजार का सिर्फ नजारा नहीं, बाजार की खुशबुएं बदबुएं सब उसमें प्रोडक्शन में। और फिर बाद में उन्होंने पाया
0: जी
1: कि ऐसे काम नहीं चलेगा, द पर्सन हैज टू बी टैलेंटेड इन एक्टिंग, वरना किसी को भी खड़ा कर दो स्टेज पे सब्जी ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर
0: मुझे लगता है ना कभी हुनरमंद होना चाहिए उसको, कि गधा भी मंच पर आया हो। ये बहुत अच्छा।
1: फिर जब रिवाइव हुआ 1970 में आगरा बाजार
0: जी,
1: तो फिर हुनरमंद प्रतिभाशाली कलाकारों को एक्टर्स को ही लिया
0: जी। हाँ, देखिए ना, तो इतने सालों बाद भी आज उनकी बात हो रही है, और उन्हें थिएटर का विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो शायद उसमें यही सब बातें रही होंगी कि इतने प्रयोग आप देखिए कहाँ मुनासिब हैं कि लोग इतने प्रयोग करें और उसे मंच तक ले आएं। सबसे बड़ी बात यह है। तो वो नज्म कौन सी थी आपके मुंह से आज लाइव हम सुनेंगे जी?
1: नजीर अकबरावादी की है, सरापा कहते हैं उसे। सरापा यानी सर से लेके पैर तक पूरा नायिका का वर्णन
0: जी।
1: तो मैं पहला बंद गाऊंगी, करिश

0: है।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और शौक है जो हम चाहेंगे कि श्रोताओं को पता लगे। नगीन जी रंगों का चुनाव बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है और अब वो भारत भर के हैंडलूम को, स्पेशली साड़ियों को बहुत पसंद करती हैं। और हालांकि पता नहीं उनको ये सवाल कैसा लगेगा,
0: नहीं,
1: लेकिन
0: बहुत
1: श्रोताओं
0: अच्छा।
1: श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि नृत्य से, लोक गायकी से उनका बहुत संबंध रहा है और थिएटर में तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे में ये चुनाव करते करते नगीन जी आपको किसी खूबसूरत साड़ी की तलाश में बाजार में ज़रूर नज़र आ सकती हैं। नगीन जी, आपके सारी बातों को करते हुए आज बहुत आनंद आया। बस चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक कोई भी आपकी पसंद का, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, चाहे वो लोकगीत हो या कोई नज्म हो या कोई सुआ हो, कुछ भी जो आप सुनाना चाहें।
0: नहीं, साड़ियों के बारे में तो मैं ये कहूंगी, ये भी मैंने अपने पिता से ही सीखा।
1: जी
0: उन्होंने एक साड़ी खरीदी थी, साउथ इंडियन थी वो, 7 हाथ की थी
1: जी
0: और वो जामनी थी और कत्थई रंग की थी। उसमें छुपा हुआ जो रंग था ताने बाने में वो नेवी ब्लू था, नीला, गहरा नीला।
1: जी
0: तो उसमें उन्होंने ब्लाउज मेरे लिए सिलवाया, कोसे का, गहरे नीले रंग का,
1: जी
0: और सफेद दुपट्टा, रानी का कॉस्ट्यूम चरणदास चोर के लिए।
1: जी
0: तो ये मैंने उनसे सीखा कि रंगों में बैलेंस होता है और जीवन में भी रंग होते हैं तो वस्त्रों में भी रंग होते हैं और सबका परस्परस आपस में कहीं ना कहीं संबंध है, कनेक्शन है, चाहे वो
1: बिल्कुल
0: थिएटर हो, कुछ भी हो।
1: जी।
0: और वो साड़ियाँ खरीदते थे हबीब साहब, वही खरीदते थे कॉस्ट्यूम के लिए, और जैसे अम्मा के लिए साड़ी खरीदते थे मेरे लिए भी खरीदते थे। तो उनको शौक था साड़ियाँ खरीदने का,
1: जी
0: वो सब लोगों के लिए साड़ियाँ खरीदते थे बहुत मजा लेके।
1: जी
0: ये एक नज्म है नज़ीर की, तो वो मैं गाना चाहूँगी।
1: जी
0: पतंग वाले के पास आता है नौजवान शख्स और वो ये गाता है,
1: जी
0: तो उस एक दो बंद गाना चाहूँगी।

0: गरु फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला। ये मुशायरे की धुन है पारंपरिक।
1: आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, पर आज पहली बार ये मैं शायद किसी इंटरव्यू के आखिर में कह रही होंगी कि अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत सारी बातें हैं नगीन जी करने के लिए, लेकिन हर मुलाकात का एक अंत ज़रूरी है। और आज की बातचीत केवल एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक विरासत से साक्षात्कार था जिसने भारतीय रंगमंच को नई दृष्टि दी। आपने अपनी स्मृतियाँ, अपने अनुभव, अपने मन की बातें हमारे साथ साझा की और बहुत दोस्ताना तरीके से की, ये कहना होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत धन्यवाद, और हम ज़रूर आपसे एक बार फिर मिलेंगे आपके बहुत सारे गीतों के साथ। श्रोताओं, उम्मीद है नगीन तनवीर जी के साथ यह खास मुलाकात आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया नगीन जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित अतिथि थी सुप्रसिद्ध लोक गायिका नगीन तनवीर। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने।

0: आज आप सुनेंगे रचना पाठ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रभात साहित्य परिषद द्वारा हिंदी भवन में।
1: श्री दिनेश भदौरिया शेष साहब, उतरी जब से प्रीत हृदय में, स्वत्व गया चेतना गई है। उतरी जब से प्रीत हृदय में, स्वत्व गया चेतना गई है। तरल हुए जाते हैं तन मन, डूब प्रेम में मिटी दुई है। डूब प्रेम में मिटी दुई है। अधर मौन है, झुके नैन है, सद्य प्रेम अनुभूति हुई है। अधर मौन है, झुके नैन है, सद्य प्रेम अनुभूति हुई है। अभी मध्य संकोच प्रबल है, नया चलन है, रीति नई है। प्रीत हृदय में जब से उतरी, स्वत्व गया चेतना गई है। अंधियारे परिवेश मध्य है, अभी दीप दुति नई नई है। अंधियारे परिवेश मध्य है, अभी दीप दुति नई नई है। अभी सितार हुआ है झंकृत, अभी रागिनी छिड़ी हुई है। अभी रागिनी छिड़ी हुई है। प्रीत हृदय में जब से उतरी, स्वत्व गया चेतना गई है। अभी चेतना में आना है, राह कठिन है, पांव शिथिल है, हालत मेरी छुई मुई है। राह कठिन है, पांव शिथिल है, हालत मेरी छुई मुई है। प्रीत हृदय में जब से उतरी। और अंतिम बंद है, अब सर्वत्र सुरभि फैलेगी, कली प्रस्फुटित हुई हुई है। अब सर्वत्र सुरभि फैलेगी, कली प्रस्फुटित हुई हुई है। अभी अभी तो पुष्प खिले हैं, बगिया मन की हरी हुई है। प्रीत हृदय में जब से उतरी, स्वत्व गया चेतना गई है। तरल हुए जाते हैं तन मन, डूब प्रेम में मिटी दुई है। डूब प्रेम में मिटी दुई है। धन्यवाद।

0: श्रीमती ज्योत्सना खोले जी बहुत सम्मान के साथ
1: अभी अभी आए हैं तो जल्दी कैसे चले जाते, अभी अभी आए हैं तो जल्दी कैसे चले जाते, आए हैं तो फिर कुछ खुद, आए हैं तो फिर कुछ खुद खुद सुनते औरों को सुनाते। अभी अभी तो कुछ लिखा है, अभी अभी तो कुछ लिखा है तुमको जीते जीते, अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते, अभी अभी सांसों में उतरी, अभी अभी सांसों में उतरी सांसों की उतरी सांसों की माया, अभी अभी होठों ने जाना अपना और पराया, अभी अभी एहसास हुआ, अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीना होता है, खुद को शून्य बनाना भी कितना विराट होता है। परखे तो कोई अपना नहीं होता, समझे तो कोई पराया नहीं होता। चेहरे की हंसी से गम को भुला देना होता, कम बोलो पर सबको कुछ बता देना होता, खुद न रूठे पर सबको हंसा देना होता, यही राज है जिंदगी का जियो और जीना सिखाना होता। अभी अभी तो आए हैं जल्दी कैसे चले जाना होता।

0: श्री सुरेश सोनपुर अजनबी साहब का बहुत ही सम्मान के साथ एक बार जोरदार ताली स्वागत करें।
1: सीधे साधे भोले भाले हम सच्चे बन जाएं, सीधे साधे भोले भाले हम सच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, डाब डुबेली छुपम छुपैया खेले आँख मिचोली, डाब डुबेली छुपम छुपैया खेले आँख मिचोली, गड़ा गेंद गिल्ली और डंडा खेले कांच की गोली, गड़ा गेंद गिल्ली डंडा और खेले कांच की गोली, झगड़े थोड़ी देर आपस में फिर गले लग जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, नाटक नौटंकी खेल तमाशा देर रात तक देखें, नाटक नौटंकी खेल तमाशा देर रात तक देखें, असुंदर सपने लाल लाल जलती सिगड़ी में सेकें, असुंदर सपने लाल लाल जलती सिगड़ी में सेकें, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं। और एक और देखिए कि सुड़क सुड़क कर चाय पिए, सुड़क सुड़क कर चाय पिए चूरन की पुड़िया चाटे, सुड़क सुड़क कर चाय पिए चूरन की पुड़िया चाटे, खेल खेल में जीते हारे आपस में सुख दुख बांटे, खेल खेल में जीते हारे आपस में सुख दुख बांटे, कभी रूठे कभी हंसे हंसाएं सबका मन बहलाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, माँ की ममता प्यार पिता का कभी नहीं हम भूलें, माँ की ममता प्यार पिता का कभी नहीं हम भूलें, जब भी हो मन उदास यादों का झूला झूलें, माँ की ममता प्यार पिता का कभी नहीं हम भूलें, जब भी हो मन उदास यादों का झूला झूलें,

पिता का गमछा माँ का आंचल, अजनबी याद अब आए। पिता का गमछा माँ का आंचल, अजनबी याद अब आए। अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, कभी कभी लगता है हमको हम बच्चे बन जाएं, कभी कभी लगता है हमको हम बच्चे बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्री बिहारी लाल सोनी अनुज जी।
1: अभी अभी तो उसका विवाह हुआ था, पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था, संबंधी के घर से भोजन हेतु आमंत्रण आया हुआ था, पत्नी सहित वहाँ नई मोटरसाइकिल से जाना हुआ था, दोनों के स्वागत हेतु सबका मन आतुर बना हुआ था, दोनों के लिए वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन भी बना हुआ था, दोनों ने वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन है पाया, नई बहू ने भी वहाँ से मूल्यवान उपहार है पाया, दोनों अब वहाँ से विदाई का समय आया, दोनों का अब वहाँ से विदाई का समय आया, दोनों का मन अति प्रसन्न हो चलने को हंसाया, वरिष्ठों के चरण छुए और उनका आशीष है पाया, अन्य संबंधी के घर जाने का भी अचानक विचार है आया, उसने बहू को बैठाकर नई मोटरसाइकिल को तीव्र गति से दौड़ाया, संबंधी के घर तीव्र गति से संबंधी का घर तीव्र गति से अति निकट है आया, दोनों का खूब सत्कार कर स्वादिष्ट भोजन है करवाया, उपहार देकर सा सम्मान प्रेम से दोनों को दी विदाई, दोनों को विदाई दी, नई बहू को बैठा कर नई मोटरसाइकिल नए जोश में दौड़ा दी, अचानक सामने से बहुत तेज गति से आ रहे ट्रक से भिड़ा दी, इलाज का मौका भी ना मिला, दोनों का अचानक प्राणांत हो गया, जिस घर कल तक खुशियों का डेरा था आज वहाँ मातम का बसेरा हो गया, आज वहाँ मातम का बसेरा हो गया।

0: श्रीमती मंजू मिश्रा जी को बहुत सम्मान के साथ एक बार करता धन्य से स्वागत करेंगे।
1: बचपन बीता जवानी आई, बचपन बीता जवानी आई, बड़े हुए कुछ पढ़े लिखे लगा ये कल ही की तो बात है। अभी अभी सब काम किए बीत गए कुछ रात दिन, बस यूं लगता है ये अभी अभी की बात है। जीवन एक पहेली है, जितना सुलझाओ उलझ ही जाती है। बहुत कुछ बदल रहा, परिवर्तन यूं ही चल रहा, लगता है क्या कुछ बदला। अभी अभी तो ग्रीष्म थी, वर्षा यूं ही शुरू हुई, मौसम का चक्कर चलता रहा। ग्रीष्म, वर्षा, वसंत, शरद, शिशिर, हेमंत, ऋतुएं आईं और चली गईं। ऐसा लगता है ये अभी अभी की बात है। सृष्टि का कालचक्र यूं ही चलता रहता है, समय का पहिया यूं ही अनवरत घूमता रहता है। जब याद करें कुछ पलों को, क्षणों को, तो लगता है बस ये अभी अभी की बात है। कितने ही युग आए और चले गए, रामकृष्ण की गाथाएं सुनी देखी, लगता है बस ये अभी अभी की बात है। कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ भूली बिसरी बातें, कुछ दोस्त साथी मित्र, ढेरों उनसे बातें, कुछ गप और सड़ाके, बस यूं लगता है ये अभी अभी की बात है। बीती बातों को याद करें तो लगता है ऐसा कि ये अभी अभी की बात है।

0: बहुत ही सम्मान के साथ श्री उमेश तिवारी आरोही जी का आवाज दे रहा हूँ।
1: पीठ भरे मन मिले अभी अभी की बात है, पीठ भरे मन मिले अभी अभी की बात है, योग के संयोग मिले अभी अभी की बात है, प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है। दुनिया के बाजार में भीड़ ही भीड़ है,

बात है, जो अनजान मिले अनोखी मुलाकात है, योग के संयोग मिले अभी अभी बात है, पीठ भरे मन मिले अभी अभी की बात है, नैन से नैन मिले और बात हो गई, नैन से नैन मिले और बात हो गई, होठ दोनों के सिले कैसी करामात है, होठ दोनों के सिले कैसी करामात।

केसा गात है फूल प्रेम के खिले अभिसार की सौगात है प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है आपस का समर्पण है विश्वास की कड़ी आपस का समर्पण है विश्वास की कड़ी छोड़ सिक वे गिले प्यार की विसात है छोड़ सिक वे गिले प्यार की बिसात है प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है हाथों में हाथ ले साथ रहने की शपथ हाथों में हाथ ले साथ रहने की शपथ कभी ना डिगे हिले आरोही निशांत है कभी ना डिगे हिले आरोही निशांत है प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है योग के संयोग मिले अभी अभी की बात है प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

बैठक का समापन हम रात भैरवी से कर रहे हैं। एक भजन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अंत में हम कीर्तन गाएंगे। और कीर्तन में आप सभी हमारा सहयोग करिएगा, सभी आनंद आएगा।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी की गायन जुगलबंदी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, दिन के 10:01 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा कार्यक्रम में श्रोताओं, आप जानते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारियां। आइए आपको लिए चलते हैं सबसे पहले भोपाल शहर के जनजातीय संग्रहालय में। गौंड जनजातीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, शौर्य गाथाओं और आध्यात्मिक विश्वास को मंच प्रदान करने जननायक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये 21 से 23 अगस्त तक प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से जनजाति संग्रहालय में आयोजित होगा। आयोजन में गोंड सभ्यता के नायकों पर आधारित नृत्य नाटियों का मंचन किया जाएगा। गोंड जनजाति आख्यान वीरता या युद्ध की गाथाओं तक ही सीमित नहीं है। ये कथाएं प्रकृति के साथ सामंजस्य, समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व, आध्यात्मिक निष्ठा और सामाजिक मूल्यों की रक्षा का संदेश देती है। उन्हीं जननायकों की लोक स्मृति को आधुनिक मंच कर प्रस्तुत किया जा रहा है। आज प्रथम दिवस में यानी 21 अगस्त को राजा पेमल शाह नृत्य नाट्य का मंचन होगा। इसका निर्देशन रामचंद्र सिंह और संगीत संचालन मिलिंद त्रिवेदी करेंगे। समारोह के दूसरे दिन यानी 22 अगस्त को राजा लौह गुंडी की प्रस्तुति की जाएगी, जिसका निर्देशन सतीश श्याम और संगीत एच अनिल सिंह एवं स्वराज श्याम करेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम दिवस में 23 अगस्त को राजा हीरा खान सिंह छतरी का मंचन किया जाएगा, जिसका निर्देशन नवीन सिंह और संगीतकार कुलदीप सारवा करेंगे। श्रोताओं, अब चलते हैं भारत भवन में। मंत्रालय में 20 अगस्त को भारत भवन न्यास मंडल की बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव संस्कृति एवं न्यासी सचिव शिव शेखर शुक्ला द्वारा रखी गई कार्यसूची के तहत ट्रस्ट डीड के प्रावधान अनुसार सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए 2 नए न्यासियों का मनोनयन किया गया। बैठक में ड्रॉ प्रक्रिया के तहत कृष्णा शेट्टी और भूरीबाई को न्यासी पद से निवृत्त किया गया है। इनके स्थान पर पद्मश्री कालूराम बामनिया और कला अकादमी के पूर्व निदेशक जयंत भिसे को सर्वसम्मति से नया न्यासी नियुक्त किया गया है। न्यास मंडल ने कला प्रदर्शनी समन्वय समिति के गठन का फैसला लिया। इस समिति में निवृत्त न्यासियों शेट्टी भूरीबाई सहित मनोज जोशी और रूपंकर प्रभाग के निदेशक हरचंदन सिंह भट्टी को शामिल किया है। बैठक में 2 वर्षों में हुए वित्तीय प्रशासकीय निर्णयों और सांस्कृतिक समारोहों का अनुमोदन किया गया। भारत भवन के अध्यक्ष प्रोफेसर बामन केंद्रे ने नए न्यासियों को बधाई दी। दूसरी ओर आकर्षणम जन कल्याण समिति द्वारा शुक्रवार यानी आज शाम 7 बजे अध्ययन भवन में म्यूजिकल कॉमेडी नाटक सुपर लाल्स का मंचन किया जाएगा। नाटक बच्चों की नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों पर आधारित होगा, जिसमें से एक कहानी सतीश दवे की है और अन्य कहानियां मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पास आउट छात्रों ने लिखी हैं। निर्देशन प्रतीक शर्मा, संगीत निर्देशन संस्था की सचिव प्रिया परिहार करेंगी। आगामी सूचना दुष्यंत संग्रहालय से। युवा कवि निशांत उपाध्याय के पहले कविता संग्रह तुरपाई का विमोचन 24 अगस्त की शाम दुष्यंत संग्रहालय में होगा। छतनारा और कलम शाला के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे, कवि भास्कर लक्षकार, जीएसटी उपायुक्त रक्षा दुबे चौबे, भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेमशंकर शुक्ल और कला समीक्षक विनय उपाध्याय उपस्थित रहेंगे।

दूसरी ओर कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी समिति का 4 दिवसीय नाट्य समारोह रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप सभागार में आयोजित किया जा रहा है। समारोह के तीसरे दिन अदनान खान के निर्देशन में नाटक सन 2025 खेला गया। रंग मोहल्ला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट समिति के कलाकारों द्वारा खेला गया नाटक फिस नाटककार फ्रेडरिक ड्यूरेनमेट के प्रसिद्ध नाटक इंसिडेंट एट टिबलाइट का हिंदी रूपांतरण है। नाटक सन 2025 एक तीखा मनोवैज्ञानिक सामाजिक और राजनीतिक थ्रिलर है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। कहानी एक प्रसिद्ध लेखक सूफी और एक प्रभावशाली रहस्यमय व्यक्ति ब्रह्मात्मे के बीच की गहन बातचीत के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने पहुंचता है जिसे समाज में बेहद सफल और सम्मानित माना जाता है। अंत में शक्ति और सत्य का ये टकराव एक भयानक और हिंसक मोड़ ले लेता है। नाटक दर्शकों को इस यक्ष प्रश्न के साथ छोड़ जाता है कि क्या साहित्य सिर्फ समाज का दर्पण है या ये व्यवस्था के अपराधों को बेनकाब करने का एक सशक्त हथियार भी बन सकता है। शुरुआत में ये मुलाकात सामान्य लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये अपराध सत्ता, कॉरपोरेट लालच, मीडिया और राजनीति के खतरनाक गठजोड़ की परतें खोलने लगती है। सूफी जब ब्रह्मात्मे के उपन्यासों और पात्रों के हवाले से सवाल दागता है तो जागर होता है कि ये कहानियाँ महज कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक हत्याओं, घोटालों, पुलिस और खुफिया तंत्र से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है। जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ता है ये साफ होने लगता है कि ब्रह्मात्मे केवल एक पाठक या दर्शक नहीं है बल्कि इन अपराधों का एक गहरा हिस्सा है। दोनों के बीच की बहस कला और वास्तविकता, सच और झूठ और नैतिक जिम्मेदारी के गंभीर सवालों में बदल जाती है।

की भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जो आने वाले कार्यक्रम होंगे उनके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। अब आइए जानते हैं मौसम के क्या हाल होने वाले हैं। कल की बात करें तो भोपाल में गुरुवार को दिन भर बादल छाए रहे और कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। शहर में सीजन में अब तक 35.48 इंच बारिश हो चुकी है। इस समय तक सामान्य बारिश 3.7 इंच है, यानी भोपाल में सामान्य से 5.4

रामघाट भरत घाट डूब गए और एमपीयूपी को जोड़ने वाली सड़क भी बंद करनी पड़ी। तो श्रोताओं, ये थे मौसम के हाल और इसी के साथ परिक्रमा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आज आजाद हिंद रेडियो के इस कार्यक्रम में मैं इतिहास और मेरी साथी तारीख आपका अभिनंदन करते हैं।
1: तो इतिहास, आज हम इतिहास के किस पन्ने को खोलने वाले हैं?
0: तारीख, आज का इतिहास का पन्ना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं क्रांतिकारी केशव बलिराम हेडगेवार।
1: तो शुरू करें कथा?
0: बिल्कुल। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंडित बलिराम पंत हेडगेवार के घर हुआ था। उनका जन्म हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। ये दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नव वर्षारंभ होने के कारण ये दिन बड़ा शुभ माना जाता है।
1: इनकी माता का नाम रेवती बाई था। माता पिता ने पुत्र का नाम केशव रखा। केशव का बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन होता रहा। उनके दो बड़े भाई भी थे जिनका नाम महादेव और सीताराम था। उनके पिता वेद शास्त्र के विद्वान थे। वो पंडिताई से परिवार का भरण पोषण करते थे। उन्होंने अग्निहोत्र का व्रत लिया था।
0: केशव के सबसे बड़े भाई महादेव भी शास्त्र ज्ञाता थे। महादेव कुश्ती और शारीरिक शक्ति के लिए बहुत मशहूर थे। वो रोज अखाड़े में जाकर व्यायाम करते थे। इसके अलावा वो मोहल्ले के बच्चों को एकत्र करके उन्हें कुश्ती के दांव पेच सिखाते रहते थे।
1: महादेव भारतीय संस्कृति और विचारों का बड़ी सख्ती से पालन करते थे। केशव के मानस पटल पर महादेव के विचारों का गहरा प्रभाव था। केशव बालिकाल से ही क्रांतिकारक विचारों के धनी थे। वे डॉक्टरी पढ़ने के लिए कलकत्ता गए। केशव राव ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से प्रथम श्रेणी में डॉक्टरी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की,
0: किंतु देश सेवा के लिए नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वहाँ क्रांतिकारियों के साथ उनका मेल मिलाप हुआ। वे वहाँ अनुशीलन समिति के अंतरंग सदस्य भी बनाए गए। क्रांतिकारियों की सब गतिविधियों का ज्ञान और तंत्र सीख कर वे नागपुर

0: लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद केशव कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों में काम करते रहे। गांधी जी के अहिंसक असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में भाग लिया। वे गिरफ्तार भी हुए और सन 1922 में जेल से छूटे। नागपुर में 1923 में इन्होंने डॉक्टर मुंजे के साथ सक्रिय सहयोग किया।
1: डॉक्टर हेडगेवार ने महसूस किया कि बाहरी गुलामी खत्म करने के साथ ही देशवासियों में भारतीय होने का गौरव भी जागृत करना होगा, इसलिए उन्होंने स्थापना की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, एक ऐसे सशक्त आदर्शवादी संगठन की जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतवासी में एक दूसरे के लिए आदर तथा भारत माता के प्रति भक्ति का दिव्य भाव भरना था, जिसकी व्यवस्था, अनुशासन, परिश्रमशीलता तथा भेदभाव विहीन दृष्टि की प्रशंसा महात्मा गांधी ने भी की थी।
0: डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति थे जिसने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए तौर तरीके विकसित किए। हालांकि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असफल क्रांति और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अर्ध सैनिक संगठन की नींव रखी।
1: 1925 को दशहरे के दिन डॉक्टर साहब ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उन्होंने भारत की गुलामी के कारणों को पहचाना व इसके स्थायी समाधान हेतु संघ कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सदा यही बताने का प्रयास किया कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नए तरीकों से काम करना पड़ेगा, स्वयं को बदलना होगा, पुराने तरीके काम नहीं आएंगे।

0: केशव अपने बड़े भाई महादेव का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत अपने भाई से बिल्कुल अलग थे, इसीलिए उनके विचारों में टकराव हो जाता था। जैसे एक बार होली के दिन महादेव ने केशव से कहा, केशव आज अपने घर कुछ पुरोहित आने वाले हैं, हमें उनका आतिथ्य भांग से करना है, इसीलिए तुम जाकर भांग घोट लो।
1: लेकिन तारीख, भांग घोटना तो केशव के सिद्धांत के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने मना करते हुए कहा, क्षमा करें भैया, मैं भांग नहीं घोट सकता। ये सुनकर महादेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने केशव को डांटा, मगर केशव पर उनके डांटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे अपनी बात पर अड़े रहे। अब महादेव ने उनकी पिटाई कर दी। पिटने के बाद भी केशव अपनी बात पर अड़े रहे। उसके बाद महादेव ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब भी केशव टस से मस नहीं हुए। फिर महादेव ने उन्हें जलती लकड़ी से पीटा। केशव मार की पीड़ा को अंदर ही अंदर पी गए, मगर अपने सिद्धांत से नहीं डिगे।
0: कुछ दिनों बाद पाठशाला में केशव का दाखिला करा दिया गया। शाम को पाठशाला से आकर वे वैदिक मंत्रों, राम रक्षा स्त्रोत और कई प्रकार के अन्य मंत्रों का जप करते। वे बचपन से ही अंग्रेजों की क्रूरता और अत्याचार की बातें सुनते आ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि भारत अंग्रेजों का गुलाम है, तो उनका हृदय भावुक होकर रो पड़ा। उनके दिमाग में देश प्रेम की तरंगें उठने लगी। उसी दिन से उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत की आग धधकने लगी। उनके देश प्रेम को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे।
1: इसी तरह एक बार की बात है, जब केशव के स्कूल में महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की 7वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों में मिठाइयां बांटी गईं, पर केशव को जो मिठाई मिली उसने वो खाने के बजाय कूड़े में फेंक दी और कहा, विदेशी राजा या रानी के राज्यारोहण का उत्सव मनाना हमारे लिए शर्म की बात है, हम ऐसे उत्सव नहीं मनाएंगे।
0: केशव अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह धुन के पक्के थे। तीनों भाई बहुत मेहनती थे। एक बार उनके घर में ये योजना बनी कि घर आंगन में कुआं खोदा जाए। तीनों भाई कुएं की खुदाई में जुट गए। उन्होंने एक ही रात में कुआं खोदकर तैयार कर दिया और उसका गंदा पानी भी बाहर निकाल दिया गया। सुबह जब उनके पिता ने कुआं खुदा देखा तो उन्हें अपने बेटों पर बहुत गर्व हुआ।
1: डॉक्टर केशव राव का कहना था कि लंबी गुलामी व्यक्ति को संवेदनाहीन बना देती है। हमारे देश भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गुलामी ने भारतवासियों की बुद्धि को तो कुंठित किया ही, उन्हें अपने कर्म से भी गिरा दिया है। वे भूल गए अपने गौरवशाली अतीत को, वे नकारने लगे अपनी भूलों को। स्वयं को भारतीय कहने में भी उन्हें शर्म आती है। विदेशी भाषा और वेशभूषा अपनाकर वे स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं।

0: एक दफे जब वंदे मातरम कहने पर अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया था तो इससे केशव को हैरानी हुई। उसके बाल मन ने उससे पूछा कि क्या कोई अपनी माँ को नमस्कार भी नहीं कर सकता, क्या इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। केशव ने निश्चय लिया कि वे स्कूल का निरीक्षण करने वाले अंग्रेज अधिकारियों का स्वागत अपनी कक्षा में वंदे मातरम के घोष से ही करेंगे, और ऐसा उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर कर दिखाया।
1: तारीख इस घटना से केशव की निर्भयता और संगठन शक्ति की क्षमता की स्पष्ट झलक मिलती है। ऐसा करके उस विरासत को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिसने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था।
0: डॉक्टर साहब 1925 से 1940 तक यानी मृत्यु पर्यंत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक रहे, और 21 जून 1940 को डॉक्टर केशव राव महाज्योति में सदा सदा के लिए

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।
3: आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिखकर अवश्य बताएं। अपने पत्रों में एक प्यारा सा स्लोगन लिखना ना भूलें।
2: आपके द्वारा भेजे गए और चुने गए स्लोगन को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
3: तो फिर देर किस बात की, उठाइए कागज कलम और लिख भेजिए एक प्यारा सा स्लोगन। हमारा पता है
2: कार्यक्रम आजाद हिंद, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। पता एक बार फिर,
3: कार्यक्रम आजाद हिंद, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002।
2: तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे।
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहा कर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भांपते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भांपा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़, जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा, तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती, तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के की भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलकाजी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाट के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों के प्रमुख नाटकों का निर्माण किया। 1971 में उन्होंने फिल्म शांतता, कोर्ट चालू आहे का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अलकाजी और दुबे के बीच का संबंध सत्यदेव दुबे के रंगमंच करियर की शुरुआत इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में ही हुई थी। दुबे ने थिएटर यूनिट में अलकाजी के मार्गदर्शन में काम किया और बाद में उनके द्वारा छोड़े गए समूह का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधायुग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर

0: हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधा युग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
1: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे, और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह अक्खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था, और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझकर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
0: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती, तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा, एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते, तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
1: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था, वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे, बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वह कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है, तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
0: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे, जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
1: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साईं पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे, वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे, बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
0: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए, जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे, जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया, क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
1: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा, बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं, बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
0: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
1: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंगकर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
0: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
1: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है। उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वह कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
0: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
1: और मैं दानिश। नमस्कार।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: भारत भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद शायद खेतड़ी में ही सबसे ज्यादा दिन रुके थे। उन्हें राजस्थान से विशेष लगाव हो गया था। राजा अजीत सिंह भी जी जान से स्वामी जी की सेवा करते थे। दोनों की आत्मीयता बहुत गहरी हो गई थी। खेतड़ी के अनेकों संस्मरण हैं।
1: स्वामी जी जब कोई पुस्तक पढ़ते थे तो उनके पढ़ने की गति देखकर चकित होकर महाराजा ने एक दिन पूछा,
2: स्वामी जी इतनी जल्दी आप कैसे पढ़ लेते हैं?
1: इस सवाल का जवाब स्वामी जी कई लोगों को कई बार दे चुके थे। इस बार भी उन्होंने समझाया,
3: कोई बालक जब नया नया पढ़ना आरंभ करता है तो वो एक अक्षर का दो तीन बार उच्चारण करने के बाद ही पूरे शब्द का उच्चारण करता है। उस समय उसका ध्यान प्रत्येक अक्षर पर रहता है, परंतु जब उसका अभ्यास बढ़ जाता है तब उसकी दृष्टि अक्षर पर नहीं बल्कि एक एक शब्द पर पड़ती है और वो अक्षरों पर ध्यान दिए बिना ही सीधे शब्द का बोध करता है। जब उसका अभ्यास और भी बढ़ जाता है तो उसकी दृष्टि सीधे एक एक वाक्य पर पड़ती है और उसके अर्थ का बोध भी बढ़ जाता है। इसी अभ्यास में और भी वृद्धि हो जाने पर एक एक पृष्ठ का ज्ञान होने लगता है। ये केवल अभ्यास, ब्रह्मचर्य और एकाग्रता का फल है और कुछ नहीं। प्रयास करने पर ऐसा कोई भी कर सकता है। आप प्रयास कीजिए तो आपसे भी ऐसा ही होगा।
0: खेतड़ी के राजा को पुत्र नहीं था। उन्हें विश्वास था कि गुरुदेव के आशीर्वाद देने से अवश्य पुत्र लाभ होगा। इसी से वे एक दिन जिद कर बैठे।
2: महाराज, आप आशीर्वाद दें कि मुझे एक पुत्र हो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके श्रीमुख से इस बात का उच्चारण मात्र से मेरी इच्छा पूरी होगी।
1: राजा का एकांतिक अनुरोध और अटूट विश्वास देखकर स्वामी जी ने हृदय से आशीर्वाद दिया था। डेढ़ वर्ष के बाद दूसरी बार खेतड़ी में लौटकर आने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ था।
0: राजा से घनिष्ठता होने के बावजूद स्वामी जी हमेशा राजमहल में नहीं रहे। वे तो अक्सर दीन दरिद्र भक्त प्रजागण के घर भी जाया करते थे। खेतड़ी के भक्तों में अन्यतम अनुरागी भक्त थे पंडित शंकरलाल। इनके दरिद्र ब्राह्मण होने पर भी स्वामी जी ने अनेकों बार उनके घर पर भिक्षा ग्रहण की थी। उनके निकट राजा प्रजा सभी समान स्नेह के पात्र थे। वे सबको आनंद पूर्वक धर्म कथा सुनाते तथा श्री रामकृष्ण के उपदेश और जीवन की घटनाओं का उल्लेख कर उन सब बातों को सरल भाव से समझा दिया करते थे।
1: खेतड़ी में स्वामी जी आनंद पूर्वक ही थे और खेतड़ी वासी भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे, परंतु स्वामी जी की अंतरात्मा उन्हें कभी भी स्थिर होकर रहने नहीं देती थी। अतः 27 अक्टूबर को उन्होंने खेतड़ी से विदाई ली। शर्मा जी के मतानुसार खेतड़ी से विदा लेने के पूर्व राजा अजीत सिंह ने उनके विदाई समारोह के लिए राज्य सभा बुलाई थी एवं वहां उन्हें विवेकानंद नाम से अपना परिचय देने और इस नए नाम को नहीं बदलने का उनसे अनुरोध किया था।
0: खेतड़ी से चलकर पहले वे अजमेर पहुंचे और अपने पूर्व परिचित श्रीयुत हरिविलास सारदा के घर दो चार दिन ठहर कर बेवार चले गए। उस समय हरिविलास जी के मित्र पंडित प्रवर श्यामी जी कृष्ण वर्मा अजमेर में रहते थे, किंतु स्वामी जी के अजमेर में रहने के समय वे कार्यवश बंबई चले गए थे। लौट कर आने के बाद जब उन्होंने सुना कि स्वामी जी बेवार चले गए हैं, तब वे भी तक्षण बेवार जाकर स्वामी जी को लौटा लाए और उन्हें अपने घर में प्रायः 14-15 दिनों तक रखा। अजमेर में स्वामी जी के रहने के समय हरिविलास जी और श्याम जी ने उनसे घनिष्ठ रूप से मिलने का सुयोग पाया था तथा स्वामी जी के वेदांत में पांडित्य, स्वदेश प्रेम, सुकंठ का संगीत आदि से वे दोनों विमुग्ध हो गए थे। हरिविलास जी की दैनंदिनी में लिखा है, यदि मेरी बहुत बड़ी भूल ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये विश्ववरेण्य होंगे।
1: राजस्थान भ्रमण के समय अनेक मनोरंजक घटनाएं घटित हुई थी। उन घटनाओं से स्वामी जी के चरित्र के विविध आयामों से परिचित होने के अवसर मिलते हैं। राजस्थान में एक बार ट्रेन से यात्रा करते समय उनके डिब्बे में दो अंग्रेज सहयात्री थे। इन लोगों ने सोचा कि स्वामी जी मात्र एक साधारण फकीर हैं, अतएव वे अंग्रेजी वार्तालाप करते करते स्वामी जी का प्रसंग उठाकर हंसी मजाक करने में उन्मत्त हो गए। स्वामी जी जैसे कुछ समझते ही नहीं है इस भाव से चुपचाप अम्लान वदन बैठे रहे।

0: कुछ देर बाद एक स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर स्वामी जी ने स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में एक ग्लास पानी मांगा। दोनों अंग्रेज सहयात्रियों ने देखा कि स्वामी जी उन लोगों की भाषा जानते हैं, तब बहुत लज्जित और आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से पूछा कि वे सब कुछ समझने पर भी रंच मात्र क्रोध व्यक्त किए बिना कैसे चुपचाप बैठे थे। उत्तर में स्वामी जी ने कहा,
1: देखिए मित्रों, मूर्खों के संपर्क में मैं अपने जीवन में ये पहली बार ही नहीं आया हूँ।
2: ये सुनकर सहयात्रियों को क्रोध तो अवश्य हुआ, किंतु स्वामी जी का तेजोदित सुगठित शरीर देखकर उन लोगों ने अपना क्रोध दबाकर उनसे क्षमा याचना की।
0: राजस्थान में ही एक बार ट्रेन से लंबा सफर करते समय एक ऐसे थियोसोफिस्ट सहयात्री आ गए जो अलौकिकता में प्रचंड विश्वास रखते थे। विद्वान होने पर भी वे धर्म के विषय में अत्यंत अज्ञता का परिचय देकर अपने अनेक मूर्खोचित प्रश्नों से स्वामी जी को उत्तप्त कर रहे थे। स्वामी जी हिमालय गए थे कि नहीं, वहाँ अलौकिक शक्ति संपन्न महात्माओं का पता लगा था कि नहीं, आदि प्रश्नों का अंत नहीं था। स्वामी जी ने निश्चय किया कि इस मूर्ख पंडित को शिक्षा देना आवश्यक है। अतएव भीतर की हंसी को भीतर ही दबाए रखकर वे महात्माओं की अति आश्चर्यपूर्ण सिद्धियों और उनके प्रयोग के संदर्भ में ऐसी चमत्कार पूर्ण कहानियां कहने लगे कि वे महोदय विस्फरित नेत्रों से उनकी ओर देखकर और अपने दोनों होठ खोलकर मानो उनकी कहानियों को निगलने लगे। स्वामी जी के थोड़ा रुकने पर उक्त महोदय ने पुनः प्रश्न किया कि महात्मा गण ने वर्तमान युग की अवधि के संबंध में कुछ कहा है या नहीं।
2: हाँ, महात्माओं के साथ इस विषय पर लंबी चर्चा हुई थी। महात्माओं ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कब किस प्रकार महाप्रलय आएगा और प्रलय के अंत में नवीन सत्य युग के प्रवर्तन के लिए वे लोग किस प्रकार नए मनुष्य की सृष्टि करेंगे। उक्त सज्जन ने स्वामी जी की सभी बातों पर निर्विवाद रूप से विश्वास कर लिया और इतनी सहजता से उन्होंने इतना बड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है कि उसके प्रतिफल स्वरूप स्वामी जी को अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने सहज ही निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था।
0: भोजन उपरांत स्वामी जी ने उक्त व्यक्ति को कुछ और ठीक से देखा। वे समझ गए कि वे सज्जन हृदयवान, सरल और अलौकिक कार्यों के प्रति इतने आस्थावान हैं कि इन्होंने विचार बुद्धि खो दी है। अतएव मस्तिष्क की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए उन्होंने तब दृढ़ स्वर से ही बातें खोलकर कहा,
1: आपने अपनी विद्या और बुद्धि के रहते हुए भी इन सारी असंभव अद्भुत बातों को कैसे मान लिया।
2: उक्त सज्जन ने लज्जा से सर झुका लिया और एक बात भी नहीं कही। तब धर्म के तात्पर्य की व्याख्या एवं सीर अद्भुत विश्वसनीय धारणाओं को मिटाने के उद्देश्य से स्वामी जी कहने लगे,
1: बंधु, देखने से तो आप बुद्धिमान ही प्रतीत होते हैं। आपके समान व्यक्ति के लिए कुछ बुद्धि विवेचना कर चलना उचित है। सिद्धाई के साथ आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विचार कर देखने से यही पाया जाता है कि जो व्यक्ति सिद्धाई दिखाता है वो अपनी वासना का दास और स्वार्थपरायण होता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है चरित्र बल रूपी यथार्थ शक्ति अर्जित करना। इसका अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि रूपों को जीतना और वासना को निर्मूल करना। जिन जादुओं या इंद्रजालों से मानव जीवन की किसी भी समस्या का यथार्थ समाधान नहीं होता, उनके पीछे दौड़ने का अर्थ है शक्ति का अनुचित अपव्यय। यह मात्र एक हीन स्वार्थपरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इसके फलस्वरूप मस्तिष्क विकार उत्पन्न होता है। इन्हीं मूर्खताओं ने तो हमारी जाति का सर्वनाश किया है। अभी हम लोगों के लिए आवश्यक है सशक्त और सबल व्यवहारिक बुद्धि की, सर्वसाधारण के साथ सहानुभूति की तथा मनुष्य निर्माण करने योग्य दर्शन और धर्म की।
0: सब सुनकर स्वामी जी के उद्देश्य, धर्मनिष्ठा और महाप्राणता के संबंध में उक्त सज्जन के संदेह जाते रहे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब से वे स्वामी जी के उपदेशों का अनुसरण करेंगे।
2: श्री गिरीश चंद्र घोष को एक दिन बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने एक और घटना बताई थी। एक बार वे कहीं जाने के लिए राजस्थान के किसी स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु किसी कारण से ट्रेन के नहीं आ पाने से उन्हें 3 दिन वहीं रुकना पड़ा था। उस समय अनेक लोग उनके पास आकर धर्म चर्चा किया करते। दिन रात लोग आते और वार्तालाप कर चले जाते, किंतु उन्होंने कुछ खाया है या नहीं ये कोई भी नहीं पूछता और वे भी नहीं कहते। तीसरी रात सबके चले जाने पर एक दीनहीन व्यक्ति ने आकर पूछा,
3: महाराज आप 3 दिनों से लगातार बातें ही कर रहे हैं, जलपान तक नहीं किया, मुझे आपको देखकर बड़ी तकलीफ हो रही है महाराज।
1: तुम तो नारायण बनकर मेरे पास आए हो। हाँ मैंने सही में 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे?
3: मेरा मन तो यही चाहता है महाराज, पर मैं अपने यहाँ बनी रोटी आपको दूँ कैसे? आज्ञा हो तो मैं आटा दाल ला दूँ, आप स्वयं ही पका लीजिए।
1: नहीं, मैंने नियम बना लिया है कि आग स्पर्श नहीं करूंगा, तुम मुझे अपनी बनाई हुई रोटी ही ला दो, मैं वही खाऊंगा।
3: महाराज मैं खेतड़ी राजा की प्रजा हूँ, उन्हें अगर मालूम पड़ गया कि मैंने आपको अपनी रोटी खिलाई है तो मुझे भारी दंड मिलेगा महाराज, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा।
1: अरे डरो मत, तुम्हें दंड नहीं देंगे, मेरी बातों पर भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
2: इस घटना का जिक्र करते हुए स्वामी जी ने कहा था, उस क्षण अगर देवराज इंद्र स्वर्ण पात्र में अमृत भी लाकर उन्हें देते तो शायद उन्हें इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी उस गरीब की रोटी से हुई थी।
0: उसकी दया देखकर स्वामी जी की आंखों में जल भर आया और उन्होंने सोचा कि ऐसे हजारों उच्च चेतना संपन्न व्यक्ति पर्ण कुटियों में निवास करते हैं, किंतु हमारी नजरों में वे बराबर घृणा के पात्र और हीन रहे हैं। उन्हें उसके हाथों का भोजन ग्रहण करते देख स्टेशन के उच्च जाति के कुछ लोगों ने कहा,
4: आपने उसके हाथ का खाना खाया, क्या ये अच्छा हुआ?
1: तुम लोगों ने तो मुझे 3 दिनों से बकवाया, किंतु मैंने कुछ खाया कि नहीं क्या इसकी खोज खबर ली थी? फिर भी वो व्यक्ति छोटा है और आप अपने को ऊंचा कहकर अपनी बड़ाई करते हो, उसने जो मनुष्यता दिखाई है उससे वो छोटा कैसे हुआ?
2: खेतड़ी के राजा से परिचय होने के बाद स्वामी जी द्वारा राजा को इस घटना के संबंध में बताने पर राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया। वो तो भय से कांपते बदन से राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। मन में यह शंका हुई कि पता नहीं आज भाग्य में कौन सा दंड बदा है, किंतु राजा ने उसकी प्रशंसा की और राजा की कृपा से उस दिन से उसकी दरिद्रता दूर हो गई।
0: स्वामी जी परिवारजक जीवन की बात बहुत कुछ नहीं बताया करते थे, केवल बातचीत के क्रम में दो एक घटनाएं व्यक्त हो जाती। एक बार एक शिष्य के सामने अन्य मनस्क भाव से उन्होंने देखा था,
1: ओह कितने कष्टों से दिन बीते हैं, एक बार लगातार 3 दिनों तक भोजन नहीं मिलने से रास्ते पर मूर्छित होकर पड़ा था, जब होश हुआ तो देखा कि सारा शरीर वर्षा के जल से भीग गया है, पानी में भीगने से शरीर थोड़ा स्वस्थ लग रहा था, तब उठकर धीरे धीरे पैदल चलकर एक आश्रय में पहुंचकर कुछ खाया, तब प्राण बचे।
2: स्वामी जी राजस्थान भ्रमण समाप्त कर गुजरात पहुंचे। उनका पहला पड़ाव था अहमदाबाद, वहां पर उन्होंने श्री लाल शंकर उर्मिया शंकर नामक एक उप न्यायाधीश के घर में आश्रय पाया। अहमदाबाद गुजरात का ऐतिहासिक स्थान है। पहले उसका नाम कर्णावती था, बाद में उसे मुसलमान सुल्तानों की राजधानी होने का गौरव मिला। कभी यह भारत का एक अन्यतन सुरम्य विशाल महानगर था। टॉमस रो ने इसका लंदन की भांति विशाल कहकर उल्लेख किया था। जैनों के समुत्थान काल में ये अनेक सुंदर जैन मंदिरों तथा मुसलमानों के शासन काल में अनेक मनोहारी मस्जिदों और मकबरों से सुशोभित हुआ। स्वामी जी ने इस नगर के मध्य और आसपास में स्थित इन कीर्ति चिन्हों का अवलोकन किया। यहाँ जैन पंडितों से चर्चा करने का सुयोग पाकर उन्होंने जैन धर्म और दर्शन के संबंध में अपने ज्ञान भंडार को और समृद्ध किया। इस प्रकार कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत करने के बाद वे काठियावाड़ के अंतर्गत स्थित वर्धमान पहुंचे। वहीं रानिक देवी के मंदिर का दर्शन करने के उपरांत लिमड़ी की ओर चले, जहां उन्हें भयंकर चक्र में फंसना पड़ा था।
0: लिमड़ी राज्य कपास के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य की राजधानी का नाम भी लिमड़ी है और तत्कालीन राजा का नाम था ठाकुर बेहमिया चांद लिमड़ी। लिमड़ी नगर तक स्वामी जी पांव पैदल हो गए थे। दिन भर रास्ता चलकर वे भिक्षात्र से उदर पोषण करते और शाम होने पर जहां तहां ठहर जाते। लिमड़ी शहर में पहुंचकर खोजने पर पता चला कि समीप ही साधुओं का एक आश्रम है। वहां निवास और भोजन दोनों की सुव्यवस्था है। साधुओं के पास आते ही उन लोगों ने उनका सादर स्वागत कर उनके रहने के लिए एक अलग कमरा दिखा दिया और कहा कि जब तक उनकी इच्छा हो वे यहाँ रह सकते हैं। उस समय स्वामी जी काफी थके हुए और भूख से व्याकुल थे, अतः जगह कैसी है इस पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया और फिर साधुओं के आश्रय के संबंध में सहसा किसी के मन में संदेह उत्पन्न ही क्यों होगा। अतएव वे उपस्थित समस्या के समाधान के उद्देश्य से वहीं ठहर गए।
2: किंतु एक दो दिन बाद ही उन साधुओं का जो परिचय मिला उससे उनका सर चकरा गया। उन्होंने देखा कि ये वाम मार्गी धर्मध्वजी साधुगण अत्यंत घृणित साधना प्रणाली का अनुसरण करते हैं। धर्म के नाम पर कुत्सित कर्मानुष्ठान ही उन लोगों का ध्येय है।

0: कांप उठा। इन व्यभिचारी दुर्व्रतों के प्रधान पुजारी ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम एक उच्च कोटि के साधु लगते हो और तुम्हारा तेजोदित शरीर देखकर प्रतीत होता है कि तुमने लंबे अरसे में ब्रह्मचर्य पालन किया है। अब तुम अपनी तपस्या का फल हम लोगों को दान करो। हम लोगों ने एक विशेष साधना का अनुष्ठान कर रखा है, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम जैसे ब्रह्मचारी भंग करना आवश्यक है, अतः तुम तैयार हो जाओ।
1: वे सिहर उठे, किंतु उन्होंने अपनी सुदबुद्ध नहीं गवाई। उन्होंने सुन रखा था कि ऐसे अनेक गुप्ताचारी तथा कथित साधु हैं जो धर्म के नाम पर घृणित अनुष्ठान करते हैं, यहाँ तक कि नर हत्या भी करते हैं, किंतु वो प्रभिज्ञता ऐसे निष्ठुर रूप से उनके ही जीवन में उन्हें प्राप्त होगी, इसकी तो कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। तथापि विपत्ति के समय मूर्खता से काम नहीं चलेगा, रक्षा का उपाय निश्चय ही ढूंढना होगा। इसी से प्रकट रूप से बिना किसी घबराहट को व्यक्त किए उन्हीं लोगों के निर्देशानुसार पुनः उसी बंदी गृह में वे चले आए और एकाग्र मन से अपने इष्ट देवता का नाम जपने लगे।
0: यहाँ आने पर एक लड़के को स्वामी जी खूब स्नेह करते थे। वो नित्य उनके पास आता और गपशप करता। अड्डे के लोग उस लड़के पर संदेह नहीं करते थे और उसके आने जाने में मना ही नहीं करते थे। दूसरे दिन यथा समय उस लड़के के आने पर स्वामी जी ने मानो मनचाही वस्तु पाली। उन्होंने मित्र भाव से उस लड़के को अपने समक्ष उपस्थित संकट के विषय में बच्चों के समझने योग्य रूप में मोटे तौर पर बताया। इस पर अत्यंत कोमल स्वरों में उसने जानना चाहा कि वो इस प्रसंग में कुछ कर सकता है कि नहीं। स्वामी जी ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे द्वारा ही मेरा उद्धार होगा। उन्होंने मिट्टी के टूटे घड़े के एक टुकड़े पर लकड़ी के कोयले से अंग्रेजी में अपने समक्ष उपस्थित संकट का परिचय देने के उद्देश्य से दो चार बातें लिखकर अपनी मुक्ति के लिए सहायता की याचना की और वो ठीकरा उस लड़के को देकर उसे लिमड़ी के राजा तक पहुंचा देने को कहा। लड़के ने उसे कपड़े में ढक लिया और तुरंत दौड़कर लिमड़ी के राजा ठाकुर साहेब बेहमिया चांद के पास पहुंचा और मिट्टी के भांड का टुकड़ा उनके हाथों में देकर स्वयं जो सुना था वो भी उसने राजा को सुनाया। ठाकुर साहब ने पल भर की देर किए बिना अपने कुछ अंग रक्षकों को स्वामी जी के छुटकारे के लिए भेजा और अड्डे के चारों ओर सेना तैनात कर दी। इस उपाय से स्वामी जी ने शीघ्र राजमहल आकर अपनी विपदा की कथा ठाकुर साहब से कही। तब राजा ने क्रोध से आग बबूला होकर उन भ्रष्ट एवं कपटी साधुओं को दंड दिया। तदुपरांत महाराजा के अनुरोध पर स्वामी जी राजभवन में ही रह गए। राजा ने भविष्य में वास स्थान का निर्णय करने और अधिक सतर्कता बरतने के लिए स्वामी जी को सावधान कर दिया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वामी जी ने भी स्वयं इसकी आवश्यकता का अनुभव किया था। लिमड़ी के महाराजा ठाकुर साहब बहुत ही खुले दिमाग के व्यक्ति थे। कई वर्ष पूर्व वे इंग्लैंड और अमेरिका से हो आए थे और उन्होंने ही सबसे पहले विवेकानंद को विदेश जाकर वेदांत का प्रचार करने का अनुरोध किया था। लिमड़ी में रहते समय स्वामी जी ने अनेक पंडितों से संस्कृत में विचार विनिमय किया था। पुरी के गोवर्धन मठ के तत्कालीन परमाध्यक्ष श्री शंकराचार्य इसके साक्षी थे। उन्होंने कहा था कि स्वामी जी के पांडित्य और विवेक ने उन्हें चकित कर दिया था।
1: ऐसे ही अनेकों अच्छी बुरी घटनाएं स्वामी जी के जीवन में घटी। भ्रमण के दौरान विभिन्न प्रकृति के लोगों से मिले, अनेक ज्ञानार्जन किया और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों और घटनाओं से हमेशा कुछ न कुछ नया सीखा। ये सारे खट्टे मीठे अनुभव उनके भविष्य के कर्म जीवन में काम आए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 105.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओ, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं मिक्सलर एप्लीकेशन पर भी, प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर। दिन के 12 बजने को हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी दोपहर कालीन सभा। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अभी भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन। यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के। किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए। श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतति उसकी। आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए, निकली ही होगी तो

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के धड़ धड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रण यज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आ मृत्यु आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध सूफी गायक वडाली ब्रदर्स का गायन।

हाजरीन, बडाली बंधुओं की तरफ से सभी को नमस्कार, जय हिंद, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आपने गाना बहुत सुना है, ये वो शहर है, बहुत दफा आ चुके हैं, बहुत आनंद मिला है। हम जब भी आते हैं यही प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, हम गुनगुना लें। क्यों गाना सारी उम्र में नहीं आता, जब थोड़ा थोड़ा गाने का पता चलता है तो उम्र खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम गाना गाने तो नहीं आए, बाबा जी की हाजिरी भरने के लिए आए हैं, कबूल कर लेना और थोड़ा सा गुनगुना लेंगे। आपकी दुआओं से शुरू करें।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोतो, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध सूफी गायक वडाली ब्रदर्स का गायन।

हाजरीन, बुडानी बंधुओं की तरफ से सभी को नमस्कार, जय हिंद, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आपने गाना बहुत सुना है, ये वो शहर है, बहुत दफा आ चुके हैं, बहुत आनंद मिला है। हम जब भी आते हैं यही प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, हम गुनगुना लें। क्यों, गाना सारी उम्र में नहीं आता, जब थोड़ा थोड़ा गाने का पता चलता है तो उम्र खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम गाना गाने तो नहीं आए, बाबा जी की हाजिरी भरने के लिए आए हैं, कबूल कर लेना और थोड़ा सा गुनगुना लेंगे। आपकी दुआओं से शुरू करें।

0: जो हम लफज कह रहे हैं, ये जो दिन है ये रोज रोज नहीं आया करते। एक दूसरे से रलकर नहीं बैठ सकते, बातें नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा लफज का पता चल जाए तो ताली लगा दिया करो। हम कह रहे हैं आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। वो ऐसे पता चलता है कि जैसे इनको पता ही नहीं चला
1: आज की बात।

0: अपसहारों से बच के चलता हूँ।
1: जब गुरु गरीब नमाज को देखा तो क्या हुआ, ऐसे लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई है। तुझे तकिया तो, तकिया एक पंजाबी का लफ्ज है, हिंदी में तुझे देखा,

ताला तेरे कितने नाम हैं, तेरे लाखों करोड़ों ही नाम हैं। कोई तुझे राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गौर कहता है। मेरे दो चार याद नाम हैं, वो शुरू लेने लगा हूँ।

0: रुपए के दर चार हैं, दर किसको बोलते हैं? दरवाजों को। गुरुद्वारे के भी दरवाजे चार हैं, दर चार हैं। चार समाज हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। काबे के दर चार हैं। अरे भैया, जिसको मानते हो अपने अपने दरवाजे से आ जाओ, आना तो एक ही जगह एक ही बाप के नाम है सभी।
1: काबे के दर
0: चार नहीं पता चला।
1: काबे के दर, काबे के दर चार।
0: रास्ता तो एक है,
1: रास्ता तो एक है।
0: पर्दा उठा के देख लो, ये दिल का पर्दा। पर्दा उठा के देख लो,

0: मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, चारों समाजों ने अपना अपना बना लिया। हिंदुओं ने मंदिर बना लिया, सिखों ने गुरुद्वारा बना लिया, ईसाइयों ने गिरजा बना लिया, मुसलमानों ने काबा बना लिया।
1: इधर मस्जिद, इधर मस्जिद, इधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा,
0: इधर मस्जिद, इधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा। अरे ये सभी खुदा के घर हैं, सभी खुदा के घर हैं। इधर गिरजा, उधर गिर

तुझको गिरना चाहिए, सभी खुदा के घर हैं, तुझको गिरना चाहिए उनके चरणों में। तो क्या हुआ कि राम जी मंदिर में है, हमारा प्रभु जो है गुरुद्वारे में, खुदा का बेटा खुदा वाले यीशु मसीह वो तो गिरजे में रहता है, वो तो काबे में है। एक शायर लिखता है, जिथे दसदा है उथे वसदा ही नहीं, नहीं पता चला, जिथे दसदा है उथे वसदा ही नहीं।

बाबा जी कहते ने पढ़ने वाले जेड़े रोज आगे पढ़ते ने कभी नजर नहीं आया, नजर नहीं आया तो काली रात ही है। खाना

जदों लब्बा ते अपने ही घरों लब्बा मेहरबान जदों मुर्शिद दी जात मुर्शिद कहिंदे ने गुरु नूं गुरु ने बताया अरे जो तेरे बीज भीतर बोल रहा है वही तो खुदा है ये ढूंढने की बात है तो गुरबाणी कहती है ए मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण तेरी भुल भुलाया तेनू खो लखी तू को है मिल सतगुर तेरा खुल जाए उकबा फिर पता लगे तू जो है ते बाबा बुल्ले शाह कहिंदे इन अखियों से राम न दिखे गुरबाणी कह रही इन आँखों से राम न दिखे ओ आखे मन माही ए आखे दस बीस रावण की जिन्हें राम पछाता नाही बाबा बुल्ले शाह कहिंदे ने बुलिया रब ते तेरे अंदर है तेनू ते नजर नहीं आ रहा बुलिया रब ते थो वख नहीं तेरी वेखण वाली अख नहीं तेनू ताइये देंदा दख नहीं तो क्या शुरू हो गया

0: शेर ने क्या लिख दिया, अरे हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे,
1: हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे,
0: कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा बना बैठे,
1: कहीं मस्जिद कहीं मंदिर गुरुद्वारा गिरजा बना बैठे।
0: अरे हमसे तो अच्छी जात परिंदों की, हमसे तो अच्छी जात परिंदों की, कभी मस्जिद पे

0: क्यों? अरे हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा गिरजा बना बैठे? अरे हमसे तो अच्छी जात परिंदों की कभी मस्जिद पे कभी मंदिर पे जा रही।
1: तेरा नाम ना।
0: बड़े भैया एक शेर बोलते हैं, बात ही आदमी आई,
1: जिते दसदा है उथे वसदा नहीं, किते वसदा इहदे नाल मेल सी, जिते दसदा है उथे वसदा ही नहीं, किड्डी 420 वाली बात। फकीर मस्जिद च चला गया, मसीते जाके कहिंदा है कहीं खुदा दे नाम पिछे मैनू एक रोटी दे दे। मौलवी ने क्या है नहीं, अच्छा तो मंदिर में चले गए। पुजारी ने कह लगे चलो एक रोटी दे दे, कह लगे बाबा डर ही कोई नहीं है नहीं। नाराज जहा होके ठेके से जा बैठा, चलिया किधर आए हो? कह लगे मैंने रोटी खानी। कहता ये ले 100 रुपया रोटी भी खाओ। कहता वाह वाह खुदा, आपने टिकाना तो मुझे मंदिरों मस्जिदों का दिया है, तो रहता ठेके में आ गया।

बाबा निजामुद्दीन औलिया उलिया जो दिल्ली वाले उनका स्टेशन भी बजता है निजामुद्दीन, उनके शिष्य थे अमीर खुसरो साहब, उनका कलाम लिखा उन्होंने अपने गुरु की शान में। जो निजामुद्दीन औलिया औला थे बाबा फरीद साहब के शिष्य थे। तो शुरू करने जा रहे हैं कलाम।

तन मोरा मन मोरे प्रीतम का जो दोनों

0: जैसे दरिया में छल्ले लगती हैं, बीच में समा जाती हैं, ऐसे ही गुरु का एक प्यार है, वो भी एक सागर है।
1: खुसरो दरिया प्रेम का
0: उल्टी धार कैसे है,

जो गर्दन उठा के चलता कहता मैं हूं, जो उपरा सो डूब गया, जो डूबा सो पा।

खुसरोबाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग रे।

0: मैं खेलूं पी के संग,
1: मैं तो खेलूं पी के संग।
0: अरे जीत गई तो

सी नैना लगाया। ये काग नहीं मुड़ रहा, काग ने जब एक लगाया ढूंगा चूंढने लगा तो कहने लगी कागा एक मेरा वास्ता है खुदा के लिए। कागा नैन निकाल लो, अरे कागा नैन निकाल लो, पर पिया पास ले जाए, अरे पहले दर्श दिखाई के।

लास्ट में एक शेर है मेरा पंजाबी का, कागा खामी मास मेरा, कागा खामी मास मेरा, ये दो

ये दो ना छेड़ी अखिया सतगुरां दे दीदार लई मैं, सतगुरां दे दीदार लई मैं, साम

गुलाबा ने दे, कमसनी पे शबाबा ने दे। मरने जीने का फिर होगा फैसला, जरा उनका जवाब आने दे। अरे खुदाया तेरी खुदाई को भी छोड़ दूंगा।

तुम बड़ो गरीब नवाज, दरियाए की राखियो अपना करके राखियो,

तन तन भाग मोरे सजनी जिनी ऐसो सुंदर प्रीतम पायो होरी खेलो चिस्ती हो खाजा नजामो धी।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में हमने आपको सुप्रसिद्ध सूफी गायक वडाली बंधुओं का गायन सुनवाया। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की प्रमेला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ भारती। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद, उनकी कलम से लिखी हुई कहानियां ऐसी लगती हैं जैसे हमारे आसपास की ही कहानी हो। मनुष्य का अधिकार उसका वर्चस्व होता है, और अगर अधिकार ना हो तो उसका मान सम्मान भी नहीं होता है, और जहां मान सम्मान होता है वहां अधिकार होता है। कुछ इसी तरह की ताने बाने से बुनी हुई मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है सुजान भगत। तो आज के कार्यक्रम में हमने कहानी चुनी है सुजान भगत।

अक्सर सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। दिव्य समाज की भांति वो पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छीट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो ही जाता था। 3 साल से लगातार एक लगा रहा था। उधर गुड़ का भाव तेज हो गया, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए थे अब उसके। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धुनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हलके के हैंड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता था। महतो मारे खुशी के फूले नहीं समाते। धन्य भाग हमारे, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जुबान नहीं सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा लिया। एक ढोलक आ गई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा।

0: अब सब सुजान के दम पर जुलूस निकलने लगा। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम नहीं थी। कभी हाकिम लोग चखते तो कभी महात्मा। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी चाहिए, साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार ना था, सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में 3 कुएं थे, बहुत से खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए हों। जो काम गांव में किसी ने न किया, वो बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने करके दिखाया था। एक दिन की बात है, गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के ही द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत इच्छा हो गई। वो अच्छा अवसर देखकर चलने को तैयार हो गया। अपनी स्त्री बुलाकी से उसने कहा। बुलाकी ने जवाब दिया, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। तब सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होता है, कौन जाने। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं। अब जे जिंदगानी का का भरोसा, चलना है बस चलना है। बुलाकी ने कहा, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान ने भी फरमान सुना दिया, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपया आ जाएगा, उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी भी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति नहीं बिगाड़ना चाहती थी। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की हो गई। सारी बिरादरी निमंत्रित हो गई। 11 गांवों में सुपारी बटी थी। इस धूमधाम से ये लाभ हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे, भगवान धन दे तो दिल भी दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया था सुजान ने, बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो भुनी भांग नहीं थी, अब देखो लक्ष्मी घुटने तोड़कर बैठी है। एक द्वेषी ने तो कह दिया, अरे कहीं गड़ा हुआ धन पा गया होगा। कई तरह की बातें होती, इस पर चारों ओर से उस पर बौछार पड़ने लगी। तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए हैं, यही उनके हाथ लगा है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो, क्यों ऐसी ईख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को तो देते हैं। सुजान महतो अब सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं, वही विचार सुजान ने भी अपना लिया। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हैं तो वो रोज स्नान नहीं कर पाता था, लेकिन पर्वों के दिन जरूर जाता। भजन भाव उसके घर होने लगे, पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य हो गई। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था, उसका कोई आदर्श कोई मर्यादा उसके सामने नहीं थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ है, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा होता है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था, इसी कांटों से वो परिस्थितियों को तौलता था, अब वो उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहें कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश कर लिया था। ब्याज का पैसा लेते हुए उसे आत्मग्लानी होने लगी, यहाँ तक कि गायों को दोहते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए। उसका रोया दुखी हो जाता। वो गांव का मुखिया था, कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, लेकिन अब उसको इससे घृणा होने लगी। पहले मजदूरों से काम लेता और कम मजदूरी देता, लेकिन अब वो पूरा का पूरा देता था। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते, यहाँ तक कि स्त्री बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से उसे कोई प्रयोजन नहीं था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अब घर के अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, क्या लेना है, किस भाव का क्या चीज है, कैसी बिकी, महत्वपूर्ण बातों में भी भगत की सलाह नहीं ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने नहीं पाता था। दोनों लड़के या स्वयं बुला की दूर से ही सारा मामला तय कर लेती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता, पर अपने घर में घट जाता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ से चारपाई उठाते देखते तो लपक कर खुद उठा देते, यहां तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते, मगर अधिकार उसके हाथ में नहीं था। वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बन गया। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। बाहर एक भिक्षुक आया, वो चिल्ला चिल्ला कर दान मांग रहा था। इतने में बड़ा लड़का भोला आया, जोर से माँ से बोला, अम्मा महात्मा कब से गला फाड़ रहे हैं, दे दो ना कुछ, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, देखो तो सही। बुलाकी ने भी उपेक्षा के भाव से कह दिया, क्या भगत जी के हाथ में मेहंदी लगी है, उन्हीं से कह दो कुछ दे देंगे। चौपट करने लगे हैं माँ, और क्या, रहने दो, कुछ का कुछ दे देंगे। तब भोला भी बोल दिया, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते हैं, 100 दफे कह दिया है कि घर गृहस्थी के मामले में अब ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। बुलाकी ने कहा, मैं जानती हूं कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देंगे। अच्छा, तब भोला ने कहा, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने भी आपत्ति की, बेटा भोला ये तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। अब देखो ना, बैलों को सानी देते हैं, गाय दोहते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते रहते हैं। माँ बेटे यहां बात कर रहे थे, लेकिन भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते नहीं देखा तो स्वयं उठकर अंदर चले गए और कठोर स्वर में बोले, सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को, द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा है, अपना काम दिन भर कर लेना, एक घड़ी के लिए भगवान का काम भी कर लो। बुलाकी ने भी उपेक्षा से कह दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम तो बैठे हो भगवान का काम करने, क्या घर भर भगवान ही काम करेंगे क्या। सुजान ने कहा, कहाँ रखा है आटा, लाओ मैं ही निकाल कर दे दूं, तुम तो बैठो और रानी बन के राज करो। बुलाकी ने तब जोर से कहा, देखो जी आटा मैंने मर मर के पीसा है, देना है ना अनाज दे दो, ऐसे लोगों के लिए मैं पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूं। सुजान ने सुना और भंडार गृह की ओर चल दिए। छोटी सी छाबड़ी को जौ से भरकर निकाल लाए, जौ शेर भर से कम नहीं था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को दिखाने के लिए ज्यादा अनाज लेकर आया, लेकिन वो भिक्षुक को देता उसके पहले ही भोला ने छबड़ी उसके हाथ से छीन ली और त्योरिया चढ़ाकर बोला, संत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है, फालतू नहीं देंगे। सुजान ने भी कहा, मैं भी तो बैठा नहीं हूं, काम करता हूं। भोला ने भी कहा, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती, हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं और पति पानी बना रहे हैं और आप लुटा रहे हो, क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है आपको, आप तो बस भगवान भजन में डूबे रहो। सुजान ने इसका उस समय कोई जवाब नहीं दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। सुजान पेड़ के नीचे जाकर विचारों में मगन हो गया, अपने ही घर में उसका अनादर, अभी वो अपाहिज तो नहीं हुआ है, हाथ पांव भी नहीं थके हैं, घर का कुछ ना कुछ काम तो करता ही है, उस पर यह अनादर, ये घर तो उसी ने बनाया, ये विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा, अब तो वो द्वार के कुत्ते के समान हो गया, पड़ा रहे घर वाले जो रूखा सूखा दे दें, खाकर पेट भर लें, क्या ऐसा जीवन सही है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, और सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। विचारों के मंथन में सुजान डूब गया। संध्या हो गई, भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर के लाया, सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से लेकिन उठा नहीं। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने गया लेकिन भूख नहीं है कहकर उसने भोला को लौटा दिया। तब स्त्री बुलाकी आ गई और मनुहार करने लगी। खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है ना, क्या हो गया? सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। ये भी लड़कों के साथ है, ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि ले जाते हैं तो जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है। दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा, भादों की अंधेरी रात में मढ़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम नहीं लेता था। और अब मेरा घर, मेरे घर पे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी को भिक्षा दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए। आग थोड़ी लगा रहा हूं घर में। कानून से भी मेरा अधिकार है, मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। इसमें किसी का क्या जाता है? और अब इस वक्त ये मनाने आई है? कभी कड़ी निगाह से नहीं देखा। रुपए पैसे लेना देना सब इसके हाथ में था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझे से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू हूँ। लुटाऊं, घर फूकूं, घोंगा हो गया हूँ, मेरी किसे परवाह है। तब लड़के ना थे, जब बीमार पड़ी थी तो मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले जाता था। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ। हाँ, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे घर से क्या मतलब। उसके मन में ये विचार तो चल रहे थे, लेकिन उसने बुलाकी से कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना कहा, अब खा पी कर क्या करूँगा बुलाकी, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करती हो? रख दे, तेरे बेटे दूसरी बार खा लेंगे। बुलाकी ने भी मनुहार किया, कैसा करते हो तुम, तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। अब भोला ने इतना ही तो कहा था ना कि इतनी सारी भीख मत ले जाओ, या और कुछ कहा था बताओ? हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया था, तुम्हें तो मजा आया। जब वो ऊपर से दो चार डंडे लगाता तब तुम्हें ठीक लगता, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होती। बुलाकी ने भी जवाब दिया, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी सादी औरत पाई है, जिस बल चाहते हो बैठा लेते हो। ऐसी मुजोर होती ना तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह ना होता। सुजान ने भी कहा, हाँ भाई, वो तो मैं कह रहा हूँ कि देवी थी और हो, मैं ही राक्षस हूँ और दैत्य हो गया हूँ, तुम सही, तुम्हारे कमाऊ बेटे सही। बात नहीं बनी, सुजान नहीं उठे और बुलाकी हार कर घर लौट गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी यही समझता था, परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया इसकी उसे खबर नहीं थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते हैं ये बात उसे भ्रम में डाली थी। लड़के उसके सामने बैठते नहीं थे, खाट पर नहीं रहते थे, उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण नहीं था। हाँ, पर आज उसे ये ज्ञात हो गया कि वो केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं था। अब तक जिस घर में राज करता था उसी घर में पराधीन बनकर वो नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सो रहा था, सुजान करवी काट रहा था। इतना श्रम उसने पहले नहीं किया था, लेकिन उसने काम भी नहीं छोड़ा था। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर आंगन में दंग रह गई। जोर से चिल्ला के बोली, क्यों रे भोला, आज रात भी कटिया ही काटता रहा क्या? कितना कहा बेटा, जी से जहान है, पर तू तो मानता ही नहीं, रात में सोया भी नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, हाँ हाँ, वो सोता कब है, जब देखता हूँ काम करता है, ऐसा कमाओ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता बाहर निकल आया, ढेर देखकर वो भी आश्चर्यचकित। माँ से बोला, माँ, शंकर आज बड़ी रात को उठा था। बुलाकी ने कहा, नहीं रे, वो तो सो रहा है, मैं समझी तू काटा है। माँ मैं तो सवेरे उठ ही नहीं सकता, दिन भर काम करा लो, रात को नहीं उठा जाता मुझसे। बुला की, तो क्या तेरे दादा ने काटी है इतनी सारी? मालूम नहीं। दोपहर हो चुकी थी, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन था। भोला थक गया, उसकी बार बार इच्छा हुई कि बैलों को खोल दें, मगर डर के मारे कुछ नहीं कहा। सबको आश्चर्य हो रहा था, दादा इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं? आखिर डरते डरते बोल ही दिया, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल दें। सुजान ने कहा, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। मैं सांझ को फेंक दूंगा दादा। सुजान ने नहीं सुना। तुम क्या फेंक दोगे बेटा, देखते नहीं खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। और इस खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए, भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डांड फेंकते रहे। आधे घंटे बाद वो घर आया, थकान का नाम नहीं था, लेकिन नहा खाकर आराम करने के बदले उसने बैलों को सहलाना शुरू किया, पीठ पर हाथ फेरा, पैर मले, बैलों की तो पूंछें खड़ी हो गईं। सुजान की गोद में सिर रखकर उन्हें बहुत सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद बैलों को ये आनंद प्राप्त हुआ था, उनकी आंखों में कृतज्ञता भर गई, मानो वो कह रहे हों, अब हम तुम्हारे साथ हैं, दिन रात काम करेंगे। अन्य किसानों की भांति भोला अभी कमर सीधी ही कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठा लिया, खेत की तरफ चल दिया और दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जा रहे थे, जैसे कि उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी हो। भोला ने मढ़ैया में लेटे लेटे पिता को आते देखा, पर उठ नहीं पाया, उसकी हिम्मत छूट गई, कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसे तो बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे तो बस ज्यों का त्यों चला रहा था, क्या मालूम था कि ये सब चीजें क्या होती है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए हैं। तो भोला ने भी कह दिया, जाने दो अम्मा, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाएं हुई, निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है आदमी, काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं, उनका आदर सत्कार होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगला है, बखारी में तो अनाज रखने की जगह नहीं है। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, आज उसी खेत में 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना, खलिहानों में सतयुग का राज, जगह जगह अनाज के ढेर, यही समय है जब किसानों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते, कितने ही भाट और भिक्षुक भगत को घेरे हुए थे। आज उनमें वो भिक्षुक था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था। अचानक भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, आप ही के पास पहले आया हूँ। ऐसा है, जाओ तुम्हारे सामने ये ढेर लगा है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जाते बने ना, ले जाओ। भगत ने नम्रता से कहा। भिक्षुक ने शुभ्ध नेत्रों से ढेर को देखा। जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे भगत जी, उतना ले लूंगा। भगत ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास चादर थी, उसने कोई 10-13 अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे अधिक भरने का उसे साहस नहीं था। भगत उसके मन का भाव समझ गए, बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा लेगा भिक्षुक जी, और ले लीजिए। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना काफी है। भगत ने कहा, नहीं तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर कातर दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूँ वो करो, तुमसे जितना उठाते बने उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज तो भर लिया लेकिन भोला ने अगर गठरी नहीं उठाने दी तो कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षु कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं हुई। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अपने हाथों से अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, ले जाओ, अब ये आपका है। भिक्षुक ने कहा, बाबा इतना तो मुझसे नहीं उठेगा। भगत ने भी जोर देके कहा, अरे इतना भी नहीं उठेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो कि नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, गठरी भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। तब उसने भगत से बोला, भगत जी ये मुझसे नहीं उठेगी, और उसने हाथ जोड़ लिए। भगत ने कहा, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। भिक्षुक ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी दूर है भगत जी, अमूला का नाम तो सुना है आपने। बस भगत जी क्या करते, उन्होंने कहा, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। फिर क्या था, ये कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे पीछे चल दी। देखने वाले भगत का ये पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा है। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वो जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोला, बेटा ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, ध्यान रहे कोई भी यहां से खाली हाथ न लौट पाए, जिसको जितना चाहिए उससे ज्यादा देना। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था और अपना अधिकार बता दिया था। सच कहा है किसी ने, ये अधिकार बहुत बड़ा होता है और कर्तव्य उससे बड़ा। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुजान भगत। अब अपनी रेडियो मित्र भारती को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सुनो कहानी समेटने की। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
3: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
1: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
3: बिल्कुल,
1: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
1: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
3: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
1: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
3: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
1: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
3: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
1: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेहणी जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
3: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
1: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
3: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को, और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
1: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
3: बिल्कुल,
1: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
3: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
1: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
1: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
3: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
1: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
3: बिल्कुल।
1: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
3: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
1: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
3: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
3: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
1: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
1: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
3: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
1: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
3: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
1: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
3: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
3: बिल्कुल,
1: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
1: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
3: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
1: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
3: बिल्कुल,
1: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
3: कौन सी कविता?
1: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
3: वाह,
1: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
3: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
1: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है,
3: बिल्कुल,
1: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
3: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
1: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
3: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
1: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
3: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
1: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
3: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
1: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
3: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
1: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के तीन छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
3: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
1: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की, उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
3: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
1: और आलम यह है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
1: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
1: बिल्कुल ठीक
3: बात, साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
3: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन, पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं। तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
1: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
3: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
1: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
3: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
1: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
3: जी।
1: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से

0: सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं, तो लीजिए आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
1: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष श्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
0: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
2: बिल्कुल,
0: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
1: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: .8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम लेकर आपके रेडियो मित्र प्रमिला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बुंदेली लोक गायन। कलाकार हैं उर्मिला श्रीवास्तव और उनकी सखियां।

सभी को मेरी राम राम, सबको मेरा प्रणाम। मैं वर्षा गीतों के साथ जो बादल से संबंधित गीत हैं उन सबको लेके बुंदेली में अपने पूरे दल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ।

ये गीत मैं जो सुनाने जा रही हूँ बुंदेली में राछरा एक बहुत अच्छा गीत है अपने आप में। इसमें इस गीत में पुरुष और स्त्री दोनों मिलके जब अपनी बोनी होती है या खेत की कटाई होती है उस समय ये गीत गाया जाता है। तो इसमें जो नायिका है वो अपने मायके की और ससुराल की तुलना करके बता रही है। इस गीत के माध्यम से मैं आपको सुना रही हूँ।

जी कुब्जा के पास चले गए। उस समय गोपियां, ग्वाले, गौएं, राधा जी सब उनके विरह में व्याकुल हैं। उस समय का ये गीत है।

कभी कभी ज्यादा बारिश हो जाती है और ज्यादा बारिश होने के कारण नदी तालाब कुएं सब उफान पर रहते हैं। तो इस गीत का जो भाव है वो ये है कि नायिका अपने परिवार मतलब सास ननद जेठानी के साथ में पानी भरने जाती है और कहती है कि सबकी गागर डूब गई, मेरी क्यों नहीं डूब रही।

राधा और कृष्ण एक कदम के नीचे खड़े हुए थे, पानी बरसने लगा तो उन्होंने कहा कहाँ छिप में, तो कदम के नीचे खड़े हो गए। तो सखियाँ उनकी छवि देख के बिल्कुल निहाल हो गई। और ये दीपचंदी में एक गीत है, तो ये उन सखियों ने उस समय पर

अंतिम प्रस्तुति के रूप में एक वियोग श्रृंगार का गीत है। इस गीत के भाव हैं कि नायिका सुवना से कहती है कि मेरा संदेशा भिजवा दो मेरे पिया के पास में।

झूला झूलने के लिए पहली बार जाती है। अब वो पहली सीढ़ी में जैसी कहती है कि मैं चढ़ रही हूँ, मुझे डर लग रहा, मेरा जिया घबरा रहा है, उसके क्या भाव हैं सुनिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, अमेजॉन पॉडकास्ट और साथ ही यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: देश का चैनल देश के लिए।

0: वेद, पुराण, आख्यान ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं, धरोहर है, और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव, शौनक। देवता हैं अग्नि और छंद है जगती।
2: यज्ञेन वर्धत जात वेद समग्निम यजध्वं हविषा तना गिरा समिधानं सुप्रयसं स्वर्णरं द्युक्षं होतारं व्रजनेषु धूर्षदं। हे याज्ञिको, समिधाओं से प्रज्वलित होने वाले उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता, उत्तम अन्न संपदा से युक्त, सुखपूर्वक उद्देश्य तक पहुंचाने वाले, संग्राम में बल प्रदान करने वाले होता रूप अग्निदेव का विस्तार करो तथा हविष्यान्न समर्पित करके स्तुतियों द्वारा पूजन करो। अभित्वा नक्ति रुषसो ववाशिरेग्ने वत्सम न स्वसरेषु धेनवः दिव इवे दरतिर मानुषायुगा क्षपो भासी पुरुवार संयतः। हे अग्निदेव, जिस तरह गौएं अपने बछड़े की कामना करती हैं, उसी तरह दिन तथा रात्रि में हम आपको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। बहुतों के द्वारा वांछनीय आप भली प्रकार समर्थ होकर द्युलोक की तरह विस्तार पाते हैं। युगों युगों से आप मनुष्य के पास विद्यमान हैं तथा दिन के समान रात्रि में भी प्रकाशित होते हैं। तम देवा बुधने रजसः सुदंससम दिवस पृथिव्यो ररतिम न्येरिरे रथमिव वेद्यम शुक्र शोचिषमग्निम मित्रम न क्षितिषु प्रशंस्यम। श्रेष्ठ कर्मा द्युलोक और पृथ्वी लोक में संव्याप्त श्रेष्ठ ऐश्वर्य युक्त रथ वाले तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त प्रजाओं में सर्वश्रेष्ठ मित्र के समान प्रशंसनीय अग्निदेव को देवगण सभी लोकों में स्थापित करते हैं। तमुक्षमाणं रजसी स्व आदमे चंद्रमिव सुरुचम ह्वार आदधुः प्रश्न्याः पतरं चितयन्तमक्षभिः पाथो न पायुं जनसी उभे अनु। अंतरिक्ष से वृष्टि कराने वाले चंद्रमा के समान उत्तम कांतिमान पृथ्वी पर सर्वत्र गमनशील ज्वालाओं से दृष्टिगत होने वाले द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों में सेतु के समान व्याप्त अग्निदेव को अपने घर में एकांत स्थान पर लोग स्थापित करते हैं। स होता विश्वम परि भूत्वध्वरम तमु हव्यैर्मनुष रिंजते गिरा हरिशिप्रो वृधसानासु जर्भुरद्यौर्न स्त्रिभिश्चेतयद्रोदसी अनु। वे अग्निदेव होता रूप में संपूर्ण यज्ञ स्थल को सभी ओर से संव्याप्त करते हैं। याजक गण उन्हें हविष्यान्न तथा स्तुतियों के द्वारा अलंकृत करते हैं। जिस तरह से आकाश नक्षत्रों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार तेजस्वी ज्वालाओं से समिधाओं के बीच में पड़ते हुए अग्निदेव द्यावा पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। स नो रेवत समिधानः स्वस्तये संददस्वान्र यिमस्मासु दीदिहि आ नः कृणुष्व सुविताय रोदसी अग्ने हव्या मनुषो देव वीतये। हे अग्निदेव, हमारे लिए कल्याणकारी ऐश्वर्य प्रदान करते हुए दीप्तिमान हो। दयावा पृथ्वी को हमें सुख प्रदान करने वाली बनाए और मनुष्यों द्वारा समर्पित किए गए हविष्यान्न को देवताओं तक पहुंचाएं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के दूसरे सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस चाहिए।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महान खगोल शास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के महान वैज्ञानिक, कुशल अध्यापक और उच्च कोटि के विद्वान थे, जिन्हें सन 1983 में तारों की संरचना और विकास से संबंधित उनके शोध और अन्य महत्वपूर्ण योगदान के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो अपने चाचा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक सीवी रमन के विचारों से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने नोबेल पुरस्कार हासिल किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 20वीं सदी के उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने खगोल भौतिकी समेत व्यावहारिक गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने यर्की वेधशाला और एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के संपादक के रूप में काम किया। इसके बाद उन्हें शिकागो विश्वविद्यालय में एक रिसर्च एसोसिएट के पद पर नियुक्त किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर सन 1910 को लाहौर के एक समृद्ध वैज्ञानिक भारतीय परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सीता लक्ष्मी और पिता का नाम सुब्रमण्यम था, जो रेलवे में कार्यरत थे। बचपन में लोग उन्हें प्यार से चंद्रा कहकर पुकारा करते थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई घर पर रहकर ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने हिंदू हाई स्कूल में प्रवेश लिया, आगे की शिक्षा मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रहण की और फिर भौतिकी विषय में बीएससी कर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शुरू से ही वे एक अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्हें भारत सरकार की ओर से स्कॉलरशिप प्राप्त हुई और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। साल 1933 में उन्होंने पीएचडी की और फिर उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में फेलोशिप के लिए चुना गया। जिस साल उनके चाचा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने अपनी खोज से नोबेल पुरस्कार हासिल किया, उस समय सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल कर रहे थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अपने चाचा सीवी रमन की तरह ही विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने खगोल विज्ञान को चुना। 18 वर्ष की आयु में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का पहला शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ। स्नातक की उपाधि लेने तक उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जीवन सरलता और सादगी से भरा हुआ था और उन्हें अपने काम से अत्यंत प्रेम था। बीएससी करने के बाद उन्होंने श्वेत लघु तारों पर किए गए अनुसंधान कार्यों को बड़े ध्यान से पढ़ा। ये अनुसंधान इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक राल्फ एच फॉलर ने किया था। अध्ययन करने के बाद चंद्रशेखर ने उस विषय पर अपना एक वैज्ञानिक लेख तैयार किया। इस लेख का प्रकाशन सन 1928 में प्रोसेसिंग ऑफ द रियल सोसाइटी में हुआ। इतनी कम उम्र में उनकी ये उपलब्धि गौरव की बात थी। इस तरह वो बढ़ते रहे

24 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने तारे के गिरने और लुप्त होने की अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा सुलझा ली थी। शोध पत्र के अनुसार श्वेत लघु तारे एक निश्चित द्रव्यमान यानी डेफिनेट मास प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वे ब्लैक होल बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान आज सूर्य से 1.4 गुना होगा वे अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाएंगे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भारत सरकार की स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। यहीं पर उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट का सिद्धांत दिया, लेकिन इस सिद्धांत से उनके शिक्षक और साथी छात्र प्रभावित नहीं थे। 11 जनवरी सन 1935 को उन्होंने अपनी खोज रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सामने पेश की। इसके बाद उस वक्त के महान खगोल शास्त्री और ऑक्सफोर्ड में उनके गुरु आर्थर एडिंगटन ने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को अपना रिसर्च पेपर सबके सामने रखने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन बाद में सर आर्थर एडिंगटन भी उनके इस शोध को प्रथम दृष्टि में स्वीकार नहीं कर सके। पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हार मानने वाले नहीं थे, वे पुनः शोध साधना में जुट गए। अपनी इस खोज के माध्यम से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने तारों के समूह की अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किया। इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का तारों की संरचना और क्षोभ सिद्धांत नामक शोध भी प्रमुख रहा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर मात्र 27 वर्ष की आयु से ही खगोल भौतिकविद के रूप में अच्छी धाक जमा चुके थे। सन 1966 में जब साइंस ने कुछ और तरक्की कर ली, कंप्यूटर और गणना करने वाली दूसरी मशीनें सामने आ गईं, तब जाकर पता चला कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की गणना बिल्कुल सही थी। साल 1968 में इस महान वैज्ञानिक को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

1972 में जब ब्लैक होल की खोज हुई, तब इस खोज में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की थियरी बहुत काम आई और सन 1983 में उनके इस सिद्धांत को मान्यता मिली। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट सिद्धांत की खोज कर एक महान सफलता अर्जित की थी और इसके बाद पूरी दुनिया में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। तारों के ठंडा होकर सिकुड़ने के साथ केंद्र में घनीभूत होने की प्रक्रिया पर किए गए अपने रिसर्च के लिए वो दुनिया भर में जाने और माने गए। चंद्रशेखर लिमिट सिद्धांत की इस महान खोज के बाद ही न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स का पता चला। इस खोज के कारण भौतिकी के क्षेत्र में सन 1983 का नोबेल पुरस्कार उन्हें तथा डॉक्टर विलियम ए फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। उनकी खोजों से न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के अस्तित्व की धारणा कायम हुई, जिसे समकालीन खगोल विज्ञान की रीढ़ प्रस्थापना माना जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण खोजें भी की। महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपनी पहली किताब लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्टेला स्ट्रक्चर। इसके बाद उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेलर डायनेमिक्स, रिव्यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, रेडिएटिव ट्रांसफर, हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोमैग्नेटिक स्टेबिलिटी आदि महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित हुईं। इसके साथ ही उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और मशीन संबंधी सिद्धांतों की सरल भाषा में व्याख्या भी की। सन 1987 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की एक और पुस्तक ट्रुथ एंड ब्यूटी ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई थी। इसमें न्यूटन, शेक्सपियर और बिथोवन पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा दिए गए भाषण तथा कई महत्वपूर्ण निबंध शामिल थे। भारत के महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 21 अगस्त सन 1995 को अंतिम सांस ली। वे अपने जीवन के आखिरी दिनों में शिकागो आ गए थे और वहां रहकर ही किताबें लिखते थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपनी अनेक महत्वपूर्ण खोजों के माध्यम से विज्ञान जगत को अत्यंत समृद्ध किया। अपनी महान खोजों के लिए वो सदा याद किए जाते रहेंगे। भारत को दुनिया भर में गौरवान्वित करने वाली ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: नमस्ते भोपाल, मैं हूँ कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: दोस्तों नमस्कार, आमने सामने कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, रंगकर्मी और नया थिएटर की विरासत को आगे बढ़ाने वाली नगीन तनवीर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
3: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।
2: आपने बचपन से हबीब तनवीर जी को केवल एक महान रंग निर्देशक के रूप में नहीं बल्कि एक पिता के रूप में भी देखा है, और इन सब से इतर नगीन जी बहुत ज्यादा अपने भीतर लोक गायकी के एसेंस को छुपाए हुए हैं। हमें जब तब उसकी खुशबू सूंघने को मिल जाती है। आपका बहुत स्वागत है नगीन जी स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहूँ तो वो ये कि नगीन तनवीर खुद नगीन तनवीर को कैसे परिभाषित करेंगी?
4: कलाकार के तौर पर और एक सच्ची साधक के तौर पर।
2: वाह, तो ये साधना आपकी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत मधुर गाती हैं, और जब भी आपको सुना है स्टेज से तो हर बार लोक गायकी का एक नया ही रंग देखने को मिलता है। तो क्या हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी आवाज में कुछ सुन सकते हैं?
4: मैं एक बहुत पुराना पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाऊंगी जो फिल्मों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑथेंटिक जो जैसा था वैसा मैं पेश कर रही हूँ।
2: जी।
4: सासगारी देवे ननद मुहा लेवे देवर बाबू मोर।

0: क्या बात है, क्या बात है। आपको सुनना, आंखें बंद कर ली जाए और आपको सुना जाए तो ऐसे लगता है जैसे हम भी वहीं पहुंच गए हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की माटी में। बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सिक्स का ये गाना हम लोगों ने तो बिल्कुल खड़ी हिंदी में ही सुना है, लेकिन आपके मुंह से लोक भाषा में लोक रंजित तरीके से सुनना बहुत आनंददायक था। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि हबीब तनवीर जी को अपने आप में रंग धर्म का, रंग कर्म का विश्वविद्यालय माना जाता है, लेकिन कई बार इतनी बड़ी विरासत के साथ जब आप रहते हैं, ऐसी शख्सियत के साथ जब आप रहते हैं, तो शेडो इमेज का भी एक कहीं ना कहीं असर आ जाता है। आपको क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कि पिता मेरे एक बरगद के पेड़ जैसे थे
0: जी,
1: तो उसके प्रभाव में मैं थी। और पहले ऐसा था, अब वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है
0: जी।
1: अब अपनी मेरी खुद की पहचान अब बन रही है, इसलिए कि इतना उनका ऑरा था ऊर्जा का और रौब भी था। और ये मैंने देखा है कि एकाग्रता, जिसे अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं, उससे ऊर्जा बढ़ती है। उसी ऊर्जा से लोग मतलब कांपते भी थे, डरते थे और हिचकिचाते थे। उसी ऑरा का असर मुझ पे भी पड़ा, ऊर्जा का असर। और जैसे कि मैंने कहा कि बरगद के पेड़ जैसे थे, आपने कहा ना कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन विश्वविद्यालय थे, तो बरगद का पेड़ सबको समा लेता है, वैसे ही थे हबीब साहब। बहुत सालों तक उस प्रभाव में मैं झुकी रही कह सकते हैं
0: जी,
1: लेकिन अब वो बदल गया है कुछ सालों से
0: जी। जी जी, आपकी माँ मोनिका मिश्रा जी खुद बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थीं। आपको क्या लगता है हबीब तनवीर जी के रंग कर्म, नया थिएटर और उनके सपनों को साकार करने की यात्रा में मोनिका मिश्रा जी का क्या हाथ देखती हैं आप?
1: मोनिका मिश्रा जी को पूरी तालीम थी अमेरिका से, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, सब कुछ। लेकिन जब उनका विवाह हुआ हबीब साहब के साथ, तो उनको लगा कि ये मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो उन्होंने एक कदम पीछे कर लिया, वरना ईगो क्लैश होता ज़बरदस्त, तो एक कदम पीछे कर लिया। और फिर वो बैक स्टेज काम संभालती थी, प्रॉपर्टीज और कॉस्ट्यूम, और पहले रोल भी कराए हबीब साहब ने उनको, तो रोल करती थी, बहुत अच्छी कॉमेडी एक्ट्रेस थी। तो धीरे धीरे उन्होंने पीछे वो हट गई, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो एक टीम वर्क जैसे काम करने लगे। हबीब साहब डायरेक्टर थे तो वो प्रोड्यूसर थी, वो सारे टिकट छपवाती थी, इनविटेशन कार्ड्स छपवाती थी, पासेस, एंटरटेनमेंट टैक्स पहले हुआ करता था, दिल्ली में सिस्टम था, वो सब दौड़ भाग का काम वो करती थी, पब्लिक बस में जाके ये सब करती थी। तो दे वर्क लाइक अ टीम। और ये पहली मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में
0: जी
1: ऐसी टीम वर्क की। और बाद में तो ऐसा हुआ कि कोई भी चीज़ के लिए बगैर उनके सलाह मशवरा के बगैर वो आगे कदम नहीं बढ़ाते थे हबीब साहब, चाहे वो डायरेक्शन का कुछ काम हो या कॉस्ट्यूम हो या कुछ भी हो या स्क्रिप्ट में कोई टेक्स्ट हो, संवाद हो, हर चीज़ में मोनिका मिश्रा जी को दखल था। हर चीज़ में उनसे सलाह लेते थे कि ये मोनिका ये ठीक है कि नहीं है
0: जी।
1: तो कभी कभी वो मान लेते थे उनकी बात, और जब उनको वो आइडिया पसंद नहीं आता था तो उनसे कुछ नहीं कहते थे, वो चुपचाप मतलब दूसरा रास्ता अपनाते थे, दूसरा जो उनको ठीक लगता था
0: जी,
1: और कहते नहीं थे कुछ उनसे
0: जी।
1: तो मोनिका मिश्रा जी समझ जाती थी कि अब ये मेरा ये आइडिया उनको पसंद नहीं आया, लेकिन स्वीकार, एक्सेप्टेंस बहुत था, उसको कबूल कर लेना, उस पे बहस ना करना, तर्क ना करना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा।
0: आपके बचपन में आपको लिए चलते हैं नगीन जी, क्योंकि हम जब और बच्चों की परवरिश देखते हैं तो भाई पढ़ाई करो, उठो, चलो स्कूल जाना है, लेकिन हबीब साहब का तो अपने आप में कभी कहीं उनका थिएटर का प्रस्तुति होनी है, कभी कहीं जाना है, मतलब कहते हैं ना कि मुकाम से ज़्यादा सफ़र में कुछ लोग रहते हैं, तो आप कभी बहुत समय सफ़र में गुजरा होगा, आप भी हबीब साहब के साथ इधर उधर काफ़ी जाती रही हूँ, कैसा रहा आपका बचपन?
1: सबसे पहली स्मृतियां तो वो हैं करोल बाग की कि किराए का घर था और ऊपर छत पे बरसाती थी, वहां सब ट्रंक्स थे थिएटर के, वहीं पे एक वो नल की टोटी थी पीतल की, वहीं पे 8-10 छत्तीसगढ़ी वहां रहते थे और वहीं नहाते थे, खाना पकाते थे चूल्हे पर। पहले तो ये स्मृति रही। फिर जब हबीब साहब संसद सदस्य बने राज्यसभा, तो हमारी अम्मा तो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, पढ़ना है तुम्हें, होमवर्क करना, सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाती थी, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई में मुझे तो कोई दिलचस्पी थी नहीं। मैं सोचती थी कि जिंदगी बहुत अच्छी है, नाच और गाना, गाना और नाच। फिर वो पढ़ाती थी, कहती थी कि अच्छा तुम छत्तीसगढ़ियों के पास जा रही हो, 1 घंटे में वापस आना है, ये फला चैप्टर करना है, ये होमवर्क करना है। बहुत सख्त थी वो, तो हम टूर में नहीं जाते थे, वो मेरे साथ रुकती थी घर में। फिर कॉलेज डेज में फिर मैं टूर में जाने लगी, लेकिन जब तक स्कूल था मैं कोई टूर में नहीं जाती थी और अम्मा भी नहीं जाती थी। दिल्ली से बाहर अगर टूर हुआ, वो पढ़ाती थी तो वो समर्पित थी मेरे प्रति कि भाई बच्ची को पास होना, मैथमेटिक्स मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था, और क्या खिलाना है बच्ची को, भाई गिज़ा के भाई बच्ची थक भी जाती है और ये हो। तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थी हमारी अम्मा।
0: आपकी संगीत की तालीम भी बहुत बड़े बड़े गुरुओं से हुई है, आप कुछ नाम लेना चाहेंगे?
1: मैं 8 साल की थी तब शर्वरी मुखर्जी, उन्होंने सिखाया 2-2.5 साल, स्कूल में पढ़ाती थी वो, बड़ी खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि मंदिर से कोई स्कल्पचर तराशी हुई निकल के आ रही है, बहुत ही खूबसूरत थी। फिर जब वो नहीं सिखा पा रही थी तो उनकी जो गुरु थी उस्तानी दीपाली नाग, मतलब दीपाली तालुकदार, जो डॉक्टर बी डी नाग चौधरी की पत्नी थी, जिन्होंने स्वयं फैयाज खान साहब से तालीम ली थी आगरा घराना, फिर उनके अंडर मैंने संगीत प्रभाकर विशारद 6 साल का वो किया
0: जी
1: स्कूल के जमाने में। फिर बड़ौदा चली गई, माँ बाप पूछ रहे थे कि अब कौन से कॉलेज में डालें, इसको तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो दीपाली मासी बुलाते थे हम, तो वो कहने लगी कि बड़ौदा सबसे अच्छी जगह है। बड़ौदा गई, वहाँ 4 साल रही, फिर गुरु की तलाश थी। तो एक हमारे नया थिएटर में थे, वो चेलो प्लेयर थे ऑल इंडिया रेडियो में, ए ग्रेड आर्टिस्ट ज्ञान शर्मा, उन्होंने कहा हमारी अम्मा से, मोनिका सुलोचना बृहस्पति जी से सिखवाओ इसको। तब हमने सुलोचना बृहस्पति जी से 8-10 साल तालीम ली
0: जी,
1: सदरंग रामपुर सदरंग परंपरा
0: जी।
1: फिर यहाँ भोपाल शिफ्ट हो गए, फिर गुंदेचा बंधु से तालीम ली 6 साल
0: जी,
1: उनसे तालीम ली। फिर किसी ने कहा कि तुम फोक गाती रही हो तो क्यों ना तुम ठुमरी तालीम लो, इसलिए कि वो सबसे नजदीक है लोक संगीत के, और लोक संगीत का पॉलिश्ड रूप ठुमरी गायन है
0: जी।
1: तो पूर्णिमा चौधरी जो बनारस घराने की हैं, महादेव मिश्रा जी की प्रथम शिष्या, बहुत अच्छी शिष्या, उनसे सीखो। तो मैं कलकत्ते जाती थी साल में 3-4 बार उनसे तालीम लेने, 2 साल उनसे तालीम ली, ठुमरी तालीम 2-3 साल वो चली
0: जी।
1: इस तरह से
0: अब ठुमरी की बात चल रही है और नगीन जी के मुंह से कुछ सुना ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए इसे थोड़ा और सुरमय बनाते हैं इस बातचीत को। बीच बीच में बताइए क्या सुना रही हैं आप।

0: इतनी जल्दी खत्म हो जाता है तो लगता है जैसे किसी ने एक बहुत सुंदर सपने से जगा दिया हो। नगीन जी, आप बहुत बहुत अच्छा गाती हैं आप। मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि एक बार आपके कॉन्सर्ट में मैं पहुँची थी और वहाँ पर आप गा रही थी गए दिनों का सुराग लेकर, इधर से आया उधर गया वो, और शायद बहुत से लोगों ने इसको ज़रूर सुना होगा, पर वहाँ मेरे आसपास बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है और शायद ईश्वर के उतनी ही नज़दीक भी, इसलिए लोगों को वो बहुत जल्दी छू जाती है। नगीन जी, हम वापस लौट आए हैं आपकी गायकी से। आपने बॉलीवुड के लिए भी गाया है, फिल्मी जगत के लिए भी गाया है, उस अनुभव को कैसे देखती हैं आप?
1: पहली बार मौका मिला था तो अनुषा रिजवी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था उन्होंने कहा नगीन मुझे तुम्हारा गाना चाहिए और चोला माटी जरा गा के सुनाओ, फोन पे बात हो रही है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने गा के सुनाया। उन्होंने कहा इसको हम एक फिल्म में इस्तेमाल करेंगे जो मेरी फिल्म है और आमिर खान प्रोडक्शंस हैं, प्रोड्यूसर आमिर खान हैं, तुम गाना चाहोगी? मैंने कहा वाह, ये तो चांदी हो गई, क्यों नहीं। और जिस साल बाबा का इंतकाल हुआ था उसी साल जून में उनकी मौत हुई और दिसंबर 2009 में बांद्रा में स्टूडियो बुक हुआ और इसकी रिकॉर्डिंग हुई पीपली लाइफ के लिए। चार पांच टेक्स के बाद रिकॉर्डिंग हुई, फाइनलाइज हुई और सब लोगों ने बहुत सराहा और बहुत कि बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ है। तो वो एक गाने ने मुझे बिल्कुल मशहूर कर दिया।
0: तो वो एक गाना जो है आपका वो हमको सुनवा दीजिए तो हमारे श्रोताओं के लिए भी बड़े आनंद की बात होगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गीत है।
1: चोला माटी तो जीवन दर्शन है जी। और लव्स लिखे थे गंगाराम सिवारे ने जो एक लोक कवि थे बहुत अच्छे
0: जी।
1: और मंडला की ये आदिवासी धुन है पारंपरिक
0: जी।

एकर का भरोसा चोला माटी के रे, द्रोणा जैसे गुरु चले गे, कारण जैसे दानी संगी, कारण जैसे दानी बाली जै

0: बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब जब जब किसी को गलत फहमी हो और वो इस जीवन दर्शन से परिचित हो जाए तो अपने आप जमीन पर लौट आएगा। मैं वापस नया थिएटर की तरफ जाना चाहूँगी कि उसको कई लोग कहते हैं कि हबीब साहब बहुत प्रयोग करते थे नया थिएटर में, कहना चाहिए कि रंगमंच की प्रयोगशाला ही थी वो। आप इन चीज़ों को कैसे बताना चाहेंगी विस्तार से?
1: पहली चीज तो ये है कि जितने लोक नाट्य धर्म शैली के हैं हिंदुस्तान में फोक थिएटर्स, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप बहुत रहता है आशु रचना का। तो हरियाणा में स्वांग शैली कहलाती है, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होता है, और राजस्थान में भी शैली है वहाँ भी होता है, और एक और क्षेत्र में काम किया गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, साउथ उड़ीसा। तो उसमें कहाँ लोक नाट्य धर्म और कहाँ क्लासिकल, इतनी बारीक लकीर थी कि पता नहीं चलता था। तो इम्प्रोवाइजेशन, इसलिए के फोक एक्टर्स बहुत अच्छे इम्प्रोवाइजर्स हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहाँ व्यंग का पहलू, इसलिए के हसोड़ हैं, तो व्यंग का पहलू सटायर जिसे कहते हैं वो कूट कूट के भरा हुआ है। हल्की एक्टिंग, व्यंग्यात्मक, सूक्ष्म, बिल्कुल सटल, ऐसा लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे। तो इम्प्रोवाइजेशन, फिर किताबें उन्होंने खरीदी यूरोप से, इंग्लैंड से, इम्प्रो, तो उसको स्टडी करते थे, पढ़ते थे, और फिर देखते थे। दक्षिण भारत भी जाके उन्होंने कुडियाट्टम, ऐसे बहुत सारी शैलियाँ देखी हिंदुस्तान में, गुजराती थिएटर देखा, पारसी थिएटर में, मराठी थिएटर देखा, सब कुछ, और फिर क्या अमल हो सकता है मेरे थिएटर में, ये उन्होंने खूब मंथन किया, पढ़ा, जो विलायत से किताबें लाए थे, और देखा, फिर खुद का मंथन चला, फिर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ प्रैक्टिकली, इस पे मंथन भी चला होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इम्प्रोवाइजेशन, उसी में ड्रामे बने हैं
0: जी,
1: और उसी से इम्प्रोवाइजेशन के तरीके से ही स्क्रिप्ट का गठन हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी गई, संवाद। तो वो समझा देते थे कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ी मंडली को ये है कहानी, इसको तुम लोग आपस में बात कर लो, आधा घंटा 45 मिनट ले लो और मुझे करके दिखाओ। तो वो दिखाते थे, करके दिखाते थे, तो फिर कहते थे फिर से आपस में बातचीत करो और दोबारा करके दिखाओ। खुद भी मेहनत करते थे, दूसरों से भी खूब करवाते थे, उनको लगता था कि अब मुझे दखल देना है, तब वो दखल देते थे। शुरुआत में ये हुआ कि शुरू शुरू में जब छत्तीसगढ़ी मंडली बनी 1970-71 में, तो शहरी और छत्तीसगढ़ियों को मिला जुला रूप उसे ड्रामे होते थे, मसलन आगरा बाजार, लेकिन फिर वो हिंदी के संवाद उनको कहते थे कि ये बोलो, तो वो बहुत, कहीं उनका मेंटल ब्लॉक हो जाता था, वो नहीं बोल पाते थे, तो उनके समझ में नहीं आ रहा था हबीब साहब के इनको जब ग्रामीण नाचा थिएटर में देखा तो बेबाक होके एक्टिंग कर रहे, यहाँ ये कौन सी चीज है जो रुकावट डाल रही है। बहुत धीरे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हुआ कि हिंदी में बुलवा रहा हूँ इसलिए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि भाई यही संवाद तुम छत्तीसगढ़ी में बोलो, उसमें फिर रौनक आ गई और रोशनी आई। तो फिर उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया कि अब मैं छत्तीसगढ़ी में करूँगा। उनको समझ में आया कि ये जो क्रैम्प्ड फीलिंग आ रही है उनके जहन में कलाकारों के, ये भाषा की वजह से आ रही है। फिर जब सही तरीका मिल गया ना, तो फिर वो फॉर्मूला बन गया, फिर उसी ढर्रे से वो चलते थे। अगर उनको लगता था कि कुछ कमी है तो कुछ पढ़ लेते थे, किताब, ढेरों किताबें खरीदते थे विलायत से, पढ़ते थे, फिर सोचते रहते थे, सोचते रहते थे। फिर दूसरी बात यह है कि फैमिली थिएटर जैसे था, और जब छत्तीसगढ़ी कलाकारों को देखा दिल्ली वालों ने, तो उनको बहुत जल्दी स्वीकार नहीं किया, बहुत कठिन था, अफिल टास्क था, बहुत संघर्ष किया, हर कदम पे संघर्ष था। लेकिन फिर जब फॉर्मूला बन गया, तो जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है H2O, वैसे उन्होंने परंपरा, जड़ों से चीजें ली और उनको हूबहू ऐसे ही पेश कर देना, नहीं, वो कैसे इस ड्रामे में फिट होती हैं, वो कैटलिस्ट का काम, कैटलिस्ट का पर्यायवाची मुझे नहीं मालूम, तो कैटलिस्ट का काम किया। अंदर दिल और दिमाग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ
0: जी,
1: और फल की कभी चिंता नहीं की। वो फल जब मिला तो छप्पर फाड़ के दिया ऊपर वाले ने। तो ये बहादुरी से चलते रहे, दृढ़ता पूर्वक चलते रहे।
0: अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है, वो कितना सच है ये तो आज आप ही बताएंगी, कि हबीब साहब को जब जरूरत होती थी कि मंच पर कोई सब्जी वाला आ जाए तो सब्जी वाले को बुला लेते थे, और मंच पर जब कोई चौकीदार की जरूरत हो तो चौकीदार को बुला लेते थे। इसमें कितनी सच्चाई है
1: भाई। 1954 में जब आगरा बाजार तैयार हुआ फुल फ्लेजेड ड्रामा
0: जी,
1: तो एक बटला हाउस था, एक मतलब फूस की छत थी उसकी, उसको बटला हाउस कहते थे जामिया मिल्या में। हाँ। और जामिया बिल्कुल जंगल ही था, और ओखला के बाजार वालों को लिया
0: जी।
1: और एक गधे को भी लिया, और गधे ने स्टेज पे लीड कर दी। तो बाजार का सिर्फ नजारा नहीं, बाजार की खुशबुएं बदबुएं सब उसमें प्रोडक्शन में। और फिर बाद में उन्होंने पाया
0: जी
1: कि ऐसे काम नहीं चलेगा, द पर्सन हैज टू बी टैलेंटेड इन एक्टिंग, वरना किसी को भी खड़ा कर दो स्टेज पे सब्जी ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर
0: मुझे लगता है ना कभी हुनरमंद होना चाहिए उसको, कि गधा भी मंच पर आया हो। ये बहुत अच्छा।
1: फिर जब रिवाइव हुआ 1970 में आगरा बाजार
0: जी,
1: तो फिर हुनरमंद प्रतिभाशाली कलाकारों को एक्टर्स को ही लिया
0: जी। हाँ, देखिए ना, तो इतने सालों बाद भी आज उनकी बात हो रही है, और उन्हें थिएटर का विश्वविद्यालय कहा जाता है, तो शायद उसमें यही सब बातें रही होंगी कि इतने प्रयोग, आप देखिए कहाँ मुनासिब है कि लोग इतने प्रयोग करें और उसे मंच तक ले आएं, सबसे बड़ी बात यह है। तो वो नज्म कौन सी थी आपके मुंह से आज लाइव हम सुनेंगे जी?
1: नजीर अकबरावादी की है, सरापा कहते हैं उसे, सरापा यानी सर से लेके पैर तक पूरा नायिका का वर्णन
0: जी।
1: तो मैं पहला बंद गाऊंगी, हो रेज कर

0: सी है।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और शौक है जो हम चाहेंगे कि श्रोताओं को पता लगे। नगीन जी रंगों का चुनाव बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है और अब वो भारत भर के हैंडलूम को, स्पेशली साड़ियों को बहुत पसंद करती हैं। और हालांकि पता नहीं उनको ये सवाल कैसा लगेगा,
0: नहीं,
1: लेकिन
0: बहुत
1: श्रोताओं
0: अच्छा।
1: श्रोताओं हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि नृत्य से, लोक गायकी से उनका बहुत संबंध रहा है और थिएटर में तो कपड़ों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे में ये चुनाव करते करते नगीन जी आपको किसी खूबसूरत साड़ी की तलाश में बाजार में ज़रूर नज़र आ सकती हैं। नगीन जी, आपके सारी बातों को करते हुए आज बहुत आनंद आया। बस चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक कोई भी आपकी पसंद का, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, चाहे वो लोकगीत हो या कोई नज्म हो या कोई सुआ हो, कुछ भी जो आप सुनाना चाहें।
0: नहीं, साड़ियों के बारे में तो मैं ये कहूंगी, ये भी मैंने अपने पिता से ही सीखा।
1: जी
0: उन्होंने एक साड़ी खरीदी थी, साउथ इंडियन थी वो, 7 हाथ की थी
1: जी
0: और वो जामनी थी और कत्थई रंग की थी। उसमें छुपा हुआ जो रंग था ताने बाने में, वो नेवी ब्लू था, नीला, गहरा नीला।
1: जी
0: तो उसमें उन्होंने ब्लाउज मेरे लिए सिलवाया, कोसे का, गहरे नीले रंग का,
1: जी
0: और सफेद दुपट्टा, रानी का कॉस्ट्यूम चरणदास चोर के लिए।
1: जी
0: तो ये मैंने उनसे सीखा कि रंगों में बैलेंस होता है और जीवन में भी रंग होते हैं तो वस्त्रों में भी रंग होते हैं और सबका परस्परस आपस में कहीं ना कहीं संबंध है, कनेक्शन है, चाहे वो
1: बिल्कुल
0: थिएटर हो, कुछ भी हो।
1: जी जी जी
0: और वो साड़ियाँ खरीदते थे हबीब साहब, वही खरीदते थे कॉस्ट्यूम के लिए, और जैसे अम्मा के लिए साड़ी खरीदते थे मेरे लिए भी खरीदते थे। तो उनको शौक था साड़ियाँ खरीदने का,
1: जी
0: वो सब लोगों के लिए साड़ियाँ खरीदते थे बहुत मज़ा लेके।
1: जी
0: ये एक नज़्म है नज़ीर की, तो वो मैं गाना चाहूँगी।
1: जी
0: पतंग वाले के पास आता है नौजवान शख्स और वो ये गाता है,
1: जी
0: तो उस एक दो बंद गाना चाहूँगी।

0: मेरे पांव का छाला, ये मुशायरे की धुन है पारंपरिक।
1: आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, पर आज पहली बार ये मैं शायद किसी इंटरव्यू के आखिर में कह रही होंगी कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत सारी बातें हैं नगीन जी करने के लिए, लेकिन हर मुलाकात का एक अंत ज़रूरी है। और आज की बातचीत केवल एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक विरासत से साक्षात्कार था जिसने भारतीय रंगमंच को नई दृष्टि दी। आपने अपनी स्मृतियाँ, अपने अनुभव, अपने मन की बातें हमारे साथ साझा की और बहुत दोस्ताना तरीके से की, ये कहना होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत धन्यवाद, और हम ज़रूर आपसे एक बार फिर मिलेंगे आपके बहुत सारे गीतों के साथ। श्रोताओं, उम्मीद है नगीन तनवीर जी के साथ ये खास मुलाकात आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया नगीन जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित अतिथि थी सुप्रसिद्ध लोक गायिका नगीन तनवीर। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने,
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने। यह है 90.8 मेगाहर्ट्ज का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ, देश का चैनल देश के लिए। आनंद लीजिए कार्यक्रम वागर्ध का।

0: आज आप सुनेंगे रचना पाठ। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रभात साहित्य परिषद द्वारा हिंदी भवन में।
1: श्री दिनेश भदौरिया शेष साहब, उतरी जब से प्रीत हृदय में स्वत्व गया चेतना गई है। उतरी जब से प्रीत हृदय में स्वत्व गया चेतना गई है। तरल हुए जाते हैं तन मन, डूब प्रेम में मिटी दुई है। डूब प्रेम में मिटी दुई है। अधर मौन है, झुके नैन है, सद्य प्रेम अनुभूति हुई है। अधर मौन है, झुके नैन है, सद्य प्रेम अनुभूति हुई है। अभी मध्य संकोच प्रबल है, नया चलन है, रीत नई है। प्रीत हृदय में जब से उतरी, स्वत्व गया चेतना गई है। अंधियारे परिवेश मध्य है, अभी दीप दुति नई नई है। अंधियारे परिवेश मध्य है, अभी दीप दुति नई नई है। अभी सितार हुआ है झंकृत, अभी रागिनी छिड़ी हुई है। अभी रागिनी छिड़ी हुई है। प्रीत हृदय में जब से उतरी, स्वत्व गया चेतना गई है। अभी चेतना में आना है, राह कठिन है, पांव शिथिल हैं, हालत मेरी छुई मुई है। राह कठिन है, पांव शिथिल हैं, हालत मेरी छुई मुई है। प्रीत हृदय में जब से उतरी। और अंतिम बंद है, अब सर्वत्र सुरभि फैलेगी, कली प्रस्फुटित हुई हुई है। अब सर्वत्र सुरभि फैलेगी, कली प्रस्फुटित हुई हुई है। अभी अभी तो पुष्प खिले हैं, बगिया मन की हरी हुई है। प्रीत हृदय में जब से उतरी, स्वत्व गया चेतना गई है। तरल हुए जाते हैं तन मन, डूब प्रेम में मिटी दुई है। डूब प्रेम में मिटी दुई है। धन्यवाद।

0: श्रीमती ज्योत्सना खोले जी बहुत सम्मान के साथ
1: अभी अभी आए हैं तो जल्दी कैसे चले जाते, अभी अभी आए हैं तो जल्दी कैसे चले जाते, आए हैं तो फिर कुछ खुद खुद सुनते औरों को सुनाते। अभी अभी तो कुछ लिखा है तुमको जीते जीते, अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते, अभी अभी सांसों में उतरी सांसों की माया, अभी अभी होठों ने जाना अपना और पराया, अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीना होता है, खुद को शून्य बनाना भी कितना विराट होता है, परखे तो कोई अपना नहीं होता समझे तो कोई पराया नहीं होता, चेहरे की हंसी से गम को भुला देना होता कम बोलो पर सबको कुछ बता देना होता खुद न रूठे पर सबको हंसा देना होता, यही राज है जिंदगी का जियो और जीना सिखाना होता, अभी अभी तो आए हैं जल्दी कैसे चले जाना होता।

0: श्री सुरेश सोनपुर अजनबी साहब का बहुत ही सम्मान के साथ एक बार जोरदार ताली स्वागत करें।
1: सीधे साधे भोले भाले हम सच्चे बन जाएं, सीधे साधे भोले भाले हम सच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, डाब डुबेली छुपम छुपैया खेले आँख मिचोली, डाब डुबेली छुपम छुपैया खेले आँख मिचोली, गड़ा गेंद गिल्ली और डंडा खेले कांच की गोली, गड़ा गेंद गिल्ली डंडा और खेले कांच की गोली, झगड़े थोड़ी देर आपस में फिर गले लग जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, नाटक नौटंकी खेल तमाशा देर रात तक देखें, नाटक नौटंकी खेल तमाशा देर रात तक देखें, असुंदर सपने लाल लाल जलती सिगड़ी में सेकें, असुंदर सपने लाल लाल जलती सिगड़ी में सेकें, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं। और एक और देखिए कि सुड़क सुड़क कर चाय पिए, सुड़क सुड़क कर चाय पिए चूरन की पुड़िया चाटे, सुड़क सुड़क कर चाय पिए चूरन की पुड़िया चाटे, खेल खेल में जीते हारे आपस में सुख दुख बांटे, खेल खेल में जीते हारे आपस में सुख दुख बांटे, कभी रूठे कभी हंसे हंसाए सबका मन बहलाए, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, माँ की ममता प्यार पिता का कभी नहीं हम भूलें, माँ की ममता प्यार पिता का कभी नहीं हम भूलें, जब भी हो मन उदास या दो का झूला झूलें, माँ की ममता प्यार पिता का कभी नहीं हम भूलें, जब भी हो मन उदास या दो का झूला झूलें। और बचपन के मेरे मित्रों के प्रतीक है कि नंद मयंक राही पारस से, नंद मयंक राही पायस से मिलने घर हम जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, सारे सुख वैभव दुनिया के, सारे सुख वैभव दुनिया के बच्चों के आगे बौने हैं, सारे सुख वैभव दुनिया के बच्चों के आगे बौने।

है पिता का गमछा, पिता का गमछा माँ का आंचल, अजनबी याद अब आए, पिता का गमछा माँ का आंचल, अजनबी याद अब आए, अभी अभी एक सपना देखा हम बच्चे बन जाएं, कभी कभी लगता है हमको हम बच्चे बन जाएं, कभी कभी लगता है हमको हम बच्चे बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्री बिहारी लाल सोनी अनुज जी।
1: अभी अभी तो उसका विवाह हुआ था, पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। संबंधी के घर से भोजन हेतु आमंत्रण आया हुआ था, पत्नी सहित वहाँ नई मोटरसाइकिल से जाना हुआ था। दोनों के स्वागत हेतु सबका मन आतुर बना हुआ था। दोनों के लिए वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन भी बना हुआ था। दोनों ने वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन है पाया, नई बहू ने भी वहाँ से मूल्यवान उपहार है पाया। दोनों अब वहाँ से विदाई का समय आया, दोनों का अब वहाँ से विदाई का समय आया। दोनों का मन अति प्रसन्न हो चलने को हंसाया। वरिष्ठों के चरण छुए और उनका आशीष है पाया, अन्य संबंधी के घर जाने का भी अचानक विचार है आया। उसने बहू को बैठाकर नई मोटरसाइकिल को तीव्र गति से दौड़ाया। संबंधी के घर तीव्र गति से संबंधी का घर तीव्र गति से अति निकटे आया। दोनों का खूब सत्कार कर स्वादिष्ट भोजन है करवाया, उपहार देकर सा सम्मान प्रेम से दोनों को दी विदाई। दोनों को विदाई दी, नई बहू को बैठा कर नई मोटरसाइकिल नए जोश में दौड़ा दी। अचानक सामने से बहुत तेज गति से आ रहे ट्रक से भिड़ा दी। इलाज का मौका भी ना मिला, दोनों का अचानक प्राणांत हो गया। जिस घर कल तक खुशियों का डेरा था, आज वहाँ मातम का बसेरा हो गया।

0: श्रीमती मंजू मिश्रा जी को बहुत सम्मान के साथ एक बार करता धन्य से स्वागत करेंगे।
1: बचपन बीता जवानी आई, बचपन बीता जवानी आई, बड़े हुए कुछ पढ़े लिखे लगा ये कल ही की तो बात है। अभी अभी सब काम किए बीत गए कुछ रात दिन, बस यूं लगता है ये अभी अभी की बात है। जीवन एक पहेली है, जितना सुलझाओ उलझ ही जाती है। बहुत कुछ बदल रहा, परिवर्तन यूं ही चल रहा, लगता है क्या कुछ बदला। अभी अभी तो ग्रीष्म थी, वर्षा यूं ही शुरू हुई, मौसम का चक्कर चलता रहा। ग्रीष्म, वर्षा, वसंत, शरद, शिशिर, हेमंत, ऋतुएं आईं और चली गईं। ऐसा लगता है ये अभी अभी की बात है। सृष्टि का काल चक्र यूं ही चलता रहता है, समय का पहिया यूं ही अनवरत घूमता रहता है। जब याद करें कुछ पलों को, क्षणों को, तो लगता है बस ये अभी अभी की बात है। कितने ही युग आए और चले गए, राम कृष्ण की गाथाएं सुनी देखी, लगता है बस ये अभी अभी की बात है। कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ भूली बिसरी बातें, कुछ दोस्त साथी मित्र, ढेरों उनसे बातें, कुछ गप और सड़ाके, बस यूं लगता है ये अभी अभी की बात है। बीती बातों को याद करें तो लगता है ऐसा कि ये अभी अभी की बात है। धन्यवाद।

0: मैं बहुत ही सम्मान के साथ श्री उमेश तिवारी आरोही जी का आवाज दे रहा हूँ।
1: पीट भरे मन मिले अभी अभी की बात है, प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है, योग के संयोग में

अभी की बात है, नैन से नैन मिले और बात हो गई, नैन से नैन मिले और बात हो गई, होठ दोनों के सिले कैसी करामात है, होठ दोनों के सिले कैसी करामात।

की सौगात है, फूल प्रेम के खिले अभिसार की सौगात है, प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है। आपस का समर्पण है विश्वास की कड़ी, आपस का समर्पण है विश्वास की कड़ी, छोड़ शिकवे गिले प्यार की विसात है, छोड़ शिकवे गिले प्यार की विसात है, प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है। हाथों में हाथ ले साथ रहने की शपथ, हाथों में हाथ ले साथ रहने की शपथ, कभी ना डिगे हिले आरोही निशांत है, कभी ना

बात है, प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है, प्रीत भरे मन मिले अभी अभी की बात है।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर ना आए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

बैठक का समापन हम रात भैरवी से कर रहे हैं। एक भजन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अंत में हम कीर्तन गाएंगे। और कीर्तन में आप सभी हमारा सहयोग करिएगा, सभी आनंद आएगा।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी की गायन जुगलबंदी। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बता दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आज आजाद हिंद रेडियो के इस कार्यक्रम में मैं इतिहास और मेरी साथी तारीख आपका अभिनंदन करते हैं।
1: तो इतिहास, आज हम इतिहास के किस पन्ने को खोलने वाले हैं?
0: तारीख, आज का इतिहास का पन्ना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं क्रांतिकारी केशव बलिराम हेडगेवार।
1: तो शुरू करें कथा?
0: बिल्कुल। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंडित बलिराम पंत हेडगेवार के घर हुआ था। उनका जन्म हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। ये दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नव वर्षारंभ होने के कारण ये दिन बड़ा शुभ माना जाता है।
1: इनकी माता का नाम रेवती बाई था। माता पिता ने पुत्र का नाम केशव रखा। केशव का बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन होता रहा। उनके दो बड़े भाई भी थे जिनका नाम महादेव और सीताराम था। उनके पिता वेद शास्त्र के विद्वान थे। वो पंडिताई से परिवार का भरण पोषण करते थे। उन्होंने अग्निहोत्र का व्रत लिया था।
0: केशव के सबसे बड़े भाई महादेव भी शास्त्र ज्ञाता थे। महादेव कुश्ती और शारीरिक शक्ति के लिए बहुत मशहूर थे। वो रोज अखाड़े में जाकर व्यायाम करते थे। इसके अलावा वो मोहल्ले के बच्चों को एकत्र करके उन्हें कुश्ती के दांव पेच सिखाते रहते थे।
1: महादेव भारतीय संस्कृति और विचारों का बड़ी सख्ती से पालन करते थे। केशव के मानस पटल पर महादेव के विचारों का गहरा प्रभाव था। केशव बालिकाल से ही क्रांतिकारक विचारों के धनी थे। वे डॉक्टरी पढ़ने के लिए कलकत्ता गए। केशव राव ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से प्रथम श्रेणी में डॉक्टरी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की,
0: किंतु देश सेवा के लिए नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वहाँ क्रांतिकारियों के साथ उनका मेल मिलाप हुआ। वे वहाँ अनुशीलन समिति के अंतरंग सदस्य भी बनाए गए। क्रांतिकारियों की सब गतिविधियों का ज्ञान और तंत्र सीखकर वे नागपुर

0: लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद केशव कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों में काम करते रहे। गांधी जी के अहिंसक असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में भाग लिया। वे गिरफ्तार भी हुए और सन 1922 में जेल से छूटे। नागपुर में 1923 में इन्होंने डॉक्टर मुंजे के साथ सक्रिय सहयोग किया।
1: डॉक्टर हेडगेवार ने महसूस किया कि बाहरी गुलामी खत्म करने के साथ ही देशवासियों में भारतीय होने का गौरव भी जागृत करना होगा, इसलिए उन्होंने स्थापना की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, एक ऐसे सशक्त आदर्शवादी संगठन की जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतवासी में एक दूसरे के लिए आदर तथा भारत माता के प्रति भक्ति का दिव्य भाव भरना था, जिसकी व्यवस्था, अनुशासन, परिश्रमशीलता तथा भेदभाव विहीन दृष्टि की प्रशंसा महात्मा गांधी ने भी की थी।
0: डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति थे जिसने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए तौर तरीके विकसित किए। हालांकि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असफल क्रांति और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अर्ध सैनिक संगठन की नींव रखी।
1: 1925 को दशहरे के दिन डॉक्टर साहब ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उन्होंने भारत की गुलामी के कारणों को पहचाना व इसके स्थायी समाधान हेतु संघ कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सदा यही बताने का प्रयास किया कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नए तरीकों से काम करना पड़ेगा, स्वयं को बदलना होगा, पुराने तरीके काम नहीं आएंगे।

0: केशव अपने बड़े भाई महादेव का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत अपने भाई से बिल्कुल अलग थे, इसीलिए उनके विचारों में टकराव हो जाता था। जैसे एक बार होली के दिन महादेव ने केशव से कहा, केशव आज अपने घर कुछ पुरोहित आने वाले हैं, हमें उनका आतिथ्य भांग से करना है, इसीलिए तुम जाकर भांग घोट लो।
1: लेकिन तारीख, भांग घोटना तो केशव के सिद्धांत के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने मना करते हुए कहा, क्षमा करें भैया, मैं भांग नहीं घोट सकता। ये सुनकर महादेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने केशव को डांटा, मगर केशव पर उनके डांटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी बात पर अड़े रहे। अब महादेव ने उनकी पिटाई कर दी। पिटने के बाद भी केशव अपनी बात पर अड़े रहे। उसके बाद महादेव ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब भी केशव टस से मस नहीं हुए। फिर महादेव ने उन्हें जलती लकड़ी से पीटा। केशव मार की पीड़ा को अंदर ही अंदर पी गए, मगर अपने सिद्धांत से नहीं डिगे।
0: कुछ दिनों बाद पाठशाला में केशव का दाखिला करा दिया गया। शाम को पाठशाला से आकर वे वैदिक मंत्रों, राम रक्षा स्त्रोत और कई प्रकार के अन्य मंत्रों का जप करते। वे बचपन से ही अंग्रेजों की क्रूरता और अत्याचार की बातें सुनते आ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि भारत अंग्रेजों का गुलाम है, तो उनका हृदय भावुक होकर रो पड़ा। उनके दिमाग में देश प्रेम की तरंगे उठने लगी। उसी दिन से उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत की आग धधकने लगी। उनके देश प्रेम को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे।
1: इसी तरह एक बार की बात है, जब केशव के स्कूल में महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की 7वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों में मिठाइयां बांटी गई, पर केशव को जो मिठाई मिली उसने वो खाने के बजाय कूड़े में फेंक दी और कहा, विदेशी राजा या रानी के राज्यारोहण का उत्सव मनाना हमारे लिए शर्म की बात है, हम ऐसे उत्सव नहीं मनाएंगे।
0: केशव अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह धुन के पक्के थे। तीनों भाई बहुत मेहनती थे। एक बार उनके घर में ये योजना बनी कि घर आंगन में कुआं खोदा जाए। तीनों भाई कुएं की खुदाई में जुट गए। उन्होंने एक ही रात में कुआं खोदकर तैयार कर दिया और उसका गंदा पानी भी बाहर निकाल दिया गया। सुबह जब उनके पिता ने कुआं खुदा देखा तो उन्हें अपने बेटों पर बहुत गर्व हुआ।
1: डॉक्टर केशव राव का कहना था कि लंबी गुलामी व्यक्ति को संवेदनाहीन बना देती है। हमारे देश भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गुलामी ने भारतवासियों की बुद्धि को तो कुंठित किया ही, उन्हें अपने कर्म से भी गिरा दिया है। वे भूल गए अपने गौरवशाली अतीत को, वे नकारने लगे अपनी भूलों को। स्वयं को भारतीय कहने में भी उन्हें शर्म आती है। विदेशी भाषा और वेशभूषा अपनाकर वे स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं।

0: एक दफे जब वंदे मातरम कहने पर अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया था तो इससे केशव को हैरानी हुई। उसके बाल मन ने उससे पूछा कि क्या कोई अपनी माँ को नमस्कार भी नहीं कर सकता, क्या इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। केशव ने निश्चय लिया कि वे स्कूल का निरीक्षण करने वाले अंग्रेज अधिकारियों का स्वागत अपनी कक्षा में वंदे मातरम के घोष से ही करेंगे, और ऐसा उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर कर दिखाया।
1: तारीख इस घटना से केशव की निर्भयता और संगठन शक्ति की क्षमता की स्पष्ट झलक मिलती है। ऐसा करके उस विरासत को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिसने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया था।
0: डॉक्टर साहब 1925 से 1940 तक यानी मृत्यु पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक रहे, और 21 जून 1940 को डॉक्टर केशव राव महाज्योति में सदा सदा के लिए

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।
3: आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिखकर अवश्य बताएं। अपने पत्रों में एक प्यारा सा स्लोगन लिखना ना भूलें।
2: आपके द्वारा भेजे गए और चुने गए स्लोगन को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
3: तो फिर देर किस बात की, उठाइए कागज कलम और लिख भेजिए एक प्यारा सा स्लोगन। हमारा पता है
2: कार्यक्रम आजाद हिंद, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। पता एक बार फिर,
3: कार्यक्रम आजाद हिंद, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002।
2: तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे।
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे आजाद हिंद कार्यक्रम का प्रसारण। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागिनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं। ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहाकर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भांपते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भांपा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़ जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के की भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलकाजी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाट के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों के प्रमुख नाटकों का निर्माण किया। 1971 में उन्होंने फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे का निर्देशन किया जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अलकाजी और दुबे के बीच का संबंध सत्यदेव दुबे के रंगमंच करियर की शुरुआत इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में ही हुई थी। दुबे ने थिएटर यूनिट में अलकाजी के मार्गदर्शन में काम किया और बाद में उनके द्वारा छोड़े गए समूह का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधायुग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधायुग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह अक्खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझकर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा। एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध बुध खो बैठता था।

0: खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे, बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वह कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्यधारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साईं पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था वो बिना किसी

0: फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया, क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
1: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा, बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं, बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
0: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
1: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंग कर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे।